समवेत स्वर में मातृवंदना सुनने के बाद आइए सुनते हैं राजेंद्र जैन और साथियों की आवाजों में राजेंद्र जैन की ही लिखी रचना।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें हमारे इन द्वीपों में गोल मिर्च, जिसे कि आप काली मिर्च के नाम से भी जानते हैं, इसकी अधिक पैदावार हेतु एक तकनीक के संदर्भ में। वैसे परंपरागत रूप से हमारे इन द्वीपों में अधिकांश किसान भाई, जिनके पास भी बागानी ज़मीन है, गोल मिर्च की खेती करते हैं और इस फसल की अच्छी मांग हमारे किसानों के बीच है। गोल मिर्च की खेती हमारे किसान भाई नारियल और सुपारी के पेड़ों के बीच में करते हैं और अक्सर गोल मिर्च को सुपारी के वृक्षों पर चढ़ाया जाता है। गोल मिर्च की जो बेल होती है वो सुपारी के वृक्षों पर चढ़ जाती है और फिर उसमें जो फलन होता है, इससे किसान भाई गोल मिर्च की उपज प्राप्त करते हैं। देखा जाता है कि गोल मिर्च का पौधा सुपारी पर काफ़ी ऊंचाई, यानी करीब करीब 8 से 10 मीटर तक भी चढ़ जाता है, जिससे गोल मिर्च की तुड़ाई बहुत कठिन तथा खर्चीली हो जाती है। दूसरी ओर जब हम सुपारी की तुड़ाई करते हैं, उस समय भी गोल मिर्च के पौधों को काफ़ी नुकसान होता है और इस तरह से उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है। इन दो समस्याओं से बचने के लिए आप गोल मिर्च उगाने के लिए ग्लैरिसीडिया यानी जिंदा बल्ली का प्रयोग भी कर सकते हैं।

0: किसान भाइयों, इस तकनीक में जिंदा बल्ली की दो कतारें 1 मीटर की दूरी पर लगाते हैं तथा 3 साल तक जुलाई, अक्टूबर और अप्रैल में इसे काटकर 2 से 3 मीटर ऊंचे हेज यानी बाड़ का रूप दे देते हैं। इस तरह से जिंदा बल्ली की जो बाड़ या हेज तैयार होती है, इसके ऊपर गोलमिर्च की बेलों को हम चढ़ाते हैं। गोलमिर्च की रोपाई करने के लिए 2 हेज कतारों के बीच में 1 मीटर की दूरी पर 50 घन सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा तथा इतना ही गहरा गड्ढा बनाते हैं। इन गड्ढों में बराबर की मात्रा में गोबर की खाद व मिट्टी तथा ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति 2 से 5 किलो गोबर की खाद की दर से डालते हैं और फिर 3 से 4 गोलमिर्च के पौधे प्रति गड्ढे के हिसाब से हम रोपते हैं। 1 से 2 साल में काली मिर्च के जो पौधे होते हैं वो जिंदा बल्ली के ऊपर फैल जाते हैं और 3रे साल से फल देना आरंभ कर देते हैं। किसान भाइयों, इस विधि से आप गोलमिर्च का उत्पादन 10.5 टन प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में गोलमिर्च की तुड़ाई काफ़ी आसान हो जाती है तथा तुड़ाई के समय नुकसान भी कम होता है। अगर आपके पास जिंदा बल्ली की हेज या बाड़ बनाने के लिए जगह नहीं है और नारियल तथा सुपारी के बीच में ही आप गोलमिर्च की खेती करना चाहते हैं तो इनके बीच में भी आप जिंदा बल्ली के पौधों को उगा सकते हैं और इन पर आप गोलमिर्च की बेल चढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जिंदा बल्ली यानी ग्लेरिसीडिया जो होती है उसकी पत्तियाँ नाइट्रोजन से भरपूर होती हैं। इन पत्तियों के ज़मीन पर गिरने और मिट्टी में मिलने से आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी और जो दूसरी फसलें हैं उनको भी अच्छा खासा लाभ होगा। हमारे जिन किसान भाइयों के पास बागानी ज़मीन नहीं है वो भी जिंदा बल्ली का उपयोग कर काली मिर्च की खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो आप अपने खेत में बाड़ लगाते हैं या बाड़ बनाते हैं उसमें जिंदा बल्ली के पौधों को गाड़ें। जिंदा बल्ली की जो बाड़ या रेलिंग आप इस तरह से तैयार करेंगे, इस पर काली मिर्च की बेल चढ़ा दें। इस तकनीक से आप काली मिर्च की 1.2 से 1.8 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। ये तो एक पंथ दो काज वाली बात हुई, जहां एक ओर आपके बागीचे की रेलिंग का सदुपयोग होगा और साथ ही बागीचे से अतिरिक्त आय बोनस के रूप में आपको प्राप्त होगा। इन तकनीकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संपर्क कर सकते हैं।
1: ये था एग्री टिप्स।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा

0: वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथेसिय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 771 मिलियन डॉलर से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये 679 मिलियन डॉलर था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारे पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबेल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the agreement on social security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
3: This is one of first FTA of its kind, which establishes a future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical policies.

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी रंगत माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल गुरुवार 16 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान के लिए एमवी बम्बुका कल गुरुवार 16 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान होते हुए कानिकोबार की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल गुरुवार 16 तारीख को शाम 4 बजे कानिकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा।

एमवी कमोटा शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल गुरुवार 16 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी नॉर्थ पैसेज आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानी चंगा आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और शाम 4:40 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल गुरुवार 16

चलेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। यह जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानीचंगा आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और शाम 4:40 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल गुरुवार 16 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल गुरुवार 16 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप के लिए एमवी बाराटांग कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी हडबे शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। और स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग कल संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और शुक्रवार 17 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। श्रोताओं, ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

प्रिय श्रोताओं को सुमित का नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी का सफर अनगिनत मुलाकातों से होकर गुजरता है। कुछ मुलाकातें पल भर की होती हैं, तो कुछ उम्र भर की याद बन जाती है। कभी किसी अजनबी से हुई मुलाकात अपनेपन में बदल जाती है, तो कभी वर्षों बाद किसी अपने से मिलना दिल को सुकून दे जाता है। दोस्तों, कई बार जिंदगी में होने वाली मुलाकातें केवल संयोग नहीं होती, वे किसी नई शुरुआत का संकेत बन जाती है। कभी कोई मुलाकात दोस्ती की राह खोल देती है, तो कभी वही मुलाकात धीरे धीरे प्यार का रूप ले लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत पहले लोगों को मिलती है और फिर रिश्तों की डोर अपने आप बंधने लगती है। सच भी यही है कि हर मुलाकात अपने पीछे कोई ना कोई वजह जरूर छोड़ जाती है।

दोस्तों, कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनका इंतज़ार बरसों तक किया जाता है। जब वह पल आता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं और आंखें ही दिल की बात कह देती हैं। ऐसी मुलाकातों में खुशी भी होती है, अपनापन भी, और उन पलों को हमेशा के लिए संजो लेने की चाह भी। जीवन की भागदौड़ में ऐसी यादगार मुलाकातें हमें रिश्तों की अहमियत का एहसास कराती है।

प्रीत कितनी। दोस्तों, हर मुलाकात खुशियों से भरी हो ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ मुलाकातें मन में कई सवाल छोड़ जाती है, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ एहसास अनकहे रह जाती है और कुछ रिश्ते एक नए मोड़ पर आकर ठहर जाते हैं। ऐसी मुलाकातें हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर जिंदगी हमें क्या सिखाना चाहती है। लेकिन हर अनुभव, चाहे वह खुशी का हो या उदासी का, हमें पहले से अधिक परिपक्व बना जाता है।

0: दोस्तों, मुलाकातें जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती है। कुछ मुलाकातें हमें नई राह दिखाती है, कुछ रिश्तों को मजबूत बनाती है और कुछ हमें जीवन का अनमोल अनुभव दे जाती है। इसलिए जिंदगी में होने वाली हर मुलाकात की कद्र कीजिए, क्योंकि कौन सी मुलाकात आपकी जिंदगी बदल दे यह कोई नहीं जानता। इसी खूबसूरत संदेश के साथ मैं सुमित आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे सुमित। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

भयभीत सागर ने ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम के समक्ष घुटने टेक दिए। अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा याचना करता हुआ बोला, हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये पांच तत्व स्वभाव से ही जड़ होते हैं। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि करने के लिए उत्पन्न किया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वो उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। आप जैसा आदेश करें

मैं वैसा ही करूंगा। सागर का निवेदन सुनकर कृपालु श्री राम प्रसन्न हुए, बोले, तुम वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना पार उतर जाए। हे नाथ, वानर सेना में नल और नील ऐसे दो भाई हैं जिन्हें बचपन में ऋषि से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि उनके स्पर्श मात्र से भारी भारी पत्थर और पहाड़ जल में तिरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। अतः आप इनसे सेतु निर्माण कराइए और उस पार जाकर पापियों का विनाश कीजिए।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। पेश है वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं।

मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 16 जुलाई तक समुद्र में ना जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत सकीना सिराज से काव्य पाठ

0: आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे मोहम्मद अजीज, मनहर उदास, मेहदी हसन और अशोक खोसला। 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर उत्तर भट्टाचार्य का हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन होगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1328वीं कड़ी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगू में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी और विश्व युवा कौशल दिवस पर राजेश कोरेमेला के साथ ली गई भेंट वार्ता आप सुनेंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर विश्व युवा कौशल दिवस पर ज्योति लक्ष्मी एस से वार्ता आप सुन सकेंगे। दोपहर 1:10 पर महफिले कव्वाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे इस्माइल आजाद। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का आप आनंद ले पाएंगे 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन 100.9 MHz FM पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फरमाइशी फिल्मी गीतों का लाइव फोन आउट कार्यक्रम आप सुनेंगे हेलो डियर फ्रेंड्स, और फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो दोपहर बाद 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें विश्व युवा कौशल दिवस पर चर्चा और तेरेसा गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत आप सुन सकेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। शाम 4:40 पर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। बहारों की शाम कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे 4:45 पर। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6 बजे, जिसमें डॉक्टर बी गंगैया से बातचीत का विषय रहेगा धान की फसल खरपतवार प्रबंधन। युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी कहानी और विश्व युवा कौशल दिवस पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे संध्या 7:30 पर। और रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सरगम, व साथ ही विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा की प्रस्तावना आप सुनेंगे रात 8:15 पर। 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है और अब अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः अद्य प्रवर्तते। तेन सह सामाजिक सुरक्षा सन्धिरपि या DCC इति द्विगुण अंशदान सन्धिः नाम्ना प्रसिद्धः क्रियान्वितो जातः। अनेन ब्रिटेन देशे कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यावसायिकेभ्यः कार्यावसराः प्रतिस्पर्धा सामर्थ्यं च वर्धिष्यन्ते। एषः सन्धिः तावत् ब्रिटेन देशस्य विपण्यां 99% यावत् शुल्कश्रेणीषु भारतीय वस्तूनां शून्य सीमा शुल्कं सुनिश्चीकरोति, येन भारतीय निर्यातस्य संवर्धनं भविष्यति। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् वाणिज्य सचिवः राजेश अग्रवालः इतं सन्धिं भारतस्य व्यापार विकासे महत्वपूर्णं सोपानम् इति अवर्णयत्। प्रशासनेन निगदितं यत् तैः पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य सूक्ष्मावलोकनं विधीयते। भारतेन होर्मुज़ जलसन्धि मध्यस्थात् सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यद् वैश्विक स्तरे जनानाम् आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते। मन्त्रालयेन ईरान

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 1.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 84% और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:03 पर हुआ व सूर्यास्त का समय रहेगा 5:48। अब जायजा लेते हैं उड़ान संबंधी जानकारी का। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। श्रोताओं, ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.govin पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस ब्रेक के बाद।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर्टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

0: आपका बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें।
1: जिंक की गोली 14 दिन।
2: माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने शहीद द्वीप में नवनिर्मित बस टर्मिनस का उद्घाटन किया। आपदा प्रबंधन निदेशालय की ओर से स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारी पर शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर सफल महिला किसानों को सम्मानित किया गया और कला एवं संस्कृति विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान सहायता के लिए पंजीकृत सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। परिवहन विभाग ने अंडमान लोक निर्माण विभाग के सहयोग से स्थानीय यात्रियों और आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बुनियादी सुविधाएं और प्रतीक्षालय प्रदान करने हेतु शहीद द्वीप में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बस टर्मिनस का निर्माण किया है। इस नव निर्मित बस टर्मिनस का उद्घाटन मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार ने किया। इस अवसर पर आयुक्त सह सचिव चंचल यादव, आयुक्त सह सचिव डॉ. सचिन शिंदे, परिवहन सचिव रजनीश कुमार सिंह, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग, पर्यटन निदेशक विनायक शमड़िया और SDM कमलेश्वर राव S उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नवनिर्मित बस टर्मिनस से एक STS बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि स्वराज द्वीप में विकसित की जा रही यात्री टर्मिनल सुविधा की तरह

ही शहीद द्वीप में भी सी प्लेन टर्मिनल और अन्य सुविधाओं सहित नई योजनाएं बनाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने टेलीफोन और वाईफाई की समस्याओं के सुधार का आश्वासन दिया। आपदा प्रबंधन निदेशालय ने शिक्षा निदेशालय के समन्वय से कल स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारी पर शिक्षकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे बैच का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को स्कूल परिसर में आपदाओं के प्रबंधन, प्रभावी प्रतिक्रिया और तैयारी की जानकारी देना था। इस अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए आपदा प्रबंधन निदेशक प्रियंका कुमारी ने आपातकालीन स्थितियों के दौरान छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें आपदा प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत, स्कूल सुरक्षा, खोज एवं बचाव, चिकित्सा प्रथम प्रतिक्रिया और अग्निशमन सुरक्षा शामिल है। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से द्वीप समूह के बच्चों के लिए फास्टर केयर दिशा निर्देश 2025 और आफ्टर केयर दिशा निर्देश 2025 के मसौदे पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव व टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। इन मसौदों को प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। ये दोनों मसौदे विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। सभी हितधारकों, संस्थानों, संगठनों और आम जनता से इस मसौदा नियम पर अपने सुझाव और टिप्पणियां समाज कल्याण निदेशालय के पते पर जमा करने का अनुरोध किया गया है। नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज कल्याण निदेशालय ने पुलिस एंटरटेनमेंट टीम को नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सम्मानित किया है। इस अवसर पर समाज कल्याण निदेशक ने टीम के समर्पण की सराहना करते हुए नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और अंतर विभागीय सहयोग पर जोर दिया। कार्यक्रम में आम जनता को भी नशा मुक्त भारत ई शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नाबार्ड अंडमान निकोबार क्षेत्रीय कार्यालय ने कल अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के सम्मान में इस बार का स्थापना दिवस समारोह महिला किसानों और ग्रामीण बदलाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समर्पित किया गया। समारोह के दौरान किचन एंड टेरेस गार्डनिंग पर एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सब्जी उत्पादन, नर्सरी प्रबंधन और प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन की व्यवहारिक तकनीकों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पद्मश्री कामाची चिल्लम्बल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और सतत ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने में महिला किसानों की अहम भूमिका पर जोर दिया। इस दौरान सफल महिला किसानों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली लघु फिल्में भी दिखाई गईं और समुदाय में रोल मॉडल के रूप में उभरने वाली सफल महिला किसानों को पुरस्कार प्रदान किए गए। कला एवं संस्कृति विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता जारी करने के लिए द्वीप समूह के पंजीकृत सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रत्येक पात्र संगठन को 25,000 रुपये की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसके लिए सांस्कृतिक संगठनों का एक पंजीकृत कार्यालय कला संस्कृति राष्ट्रीय एकीकरण सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना और न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि से सक्रिय होना अनिवार्य है। इच्छुक संगठन अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ 18 अगस्त तक कला एवं संस्कृति निदेशक के पते पर जमा कर सकते हैं। आवेदन का निर्धारित प्रारूप प्रशासन और विभाग के वेबसाइट से डाउनलोड या कला एवं संस्कृति निदेशालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षण संस्थान के घटक कॉलेज जेएनआरएम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के उम्मीदवारों की श्रेणीवार अंतिम वरीयता सूची कॉलेज एडमिशन पोर्टल 18 जुलाई को अपलोड की जाएगी। परामर्श 20 जुलाई और नियमित कक्षाएं 27 जुलाई से शुरू होंगी। उम्मीदवारों को अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि

के अनुसार परामर्श के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार से मुलाकात कर द्वीपों में पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने हैडो जट्टी पर पर्यटक वाहनों के लिए ऑनलाइन पीएमबी वाहन प्रवेश पास के लंबित मुद्दे और द्वीप समूह के लिए हवाई किराए में हुई वृद्धि का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रशासन से स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में पर्याप्त इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का भी अनुरोध किया। मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को सभी मुद्दों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा समाचार हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है।

आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा समाचार हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने और महाकवि कालिदास जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाई है। द्वीप समाचार ने स्टॉप डायरिया अभियान 2026 के आज से शुरू होने के समाचार को प्रमुखता दी है। महिला कांग्रेस द्वारा 21 जुलाई को जंतर मंतर में विशाल विरोध प्रदर्शन करने के समाचार को अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी में जगह मिली है। इन्फो इंडिया ने मुख्य सचिव द्वारा स्वराज द्वीप के गोविंदनगर में 5 MT क्षमता वाले नए आइस प्लांट के उद्घाटन के समाचार को, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने ANC द्वारा हवाई समुद्री अभियान में 2 मछुआरों को बचाने के समाचार को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार ने शहीद द्वीप में नवनिर्मित बस टर्मिनस का उद्घाटन किया। आपदा प्रबंधन निदेशालय की ओर से स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारी पर शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर सफल महिला किसानों को सम्मानित किया गया और कला एवं संस्कृति विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान सहायता के लिए पंजीकृत सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी।

इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि जिस मिट्टी में हमें जन्म दिया उससे बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। हमारा भारत वीरों की भूमि है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां मिलकर एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। हमारा देश भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी शान और हमारा अभिमान है।

दोस्तों, जब भी हमारे देश की शांति, सुरक्षा और सम्मान पर कोई चुनौती आती है, तब हर सच्चे भारतीय का दिल अपने वतन के लिए धड़क उठता है। देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों, एकता और आपसी भाईचारे में दिखाई देता है। ऐसे में हर एक देशवासियों का फर्ज बनता है कि हम भी सरफरोशी की तमन्ना दिल में जगाए रखें।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

दोस्तों, सपनों की कीमत वही जानता है जो रातों को जागकर मेहनत करता है। किस्मत तो एक बहाना है, असली जादू इंसान की लगन करता है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको बता दें, आज विश्व युवा कौशल दिवस है जो हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रेरित करना है। कौशल विकास से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ये दिवस युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देता है। इसलिए हमें निरंतर नए कौशल सीखकर अपने मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए, विश्व युवा कौशल दिवस पर नए कौशल सीखने का संकल्प ले और हमेशा खुश, आत्मनिर्भर तथा सफल जीवन जीने का प्रयास करें।

0: जसलीन रॉयल और साथियों की आवाज़ों में ये था डियर जिंदगी फिल्म का गाना, जिसे लिखा था कौसर मुनीर ने व संगीत से सजाया था अमित त्रिवेदी ने। श्रोताओं, इस गीत के बाद आइए सुनते हैं सकीना सिराज से काव्य पाठ।
1: नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम में मैंने खास करके इन दोनों नज़मों को शामिल किया है। गांव की बरसात, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, एहसास में डूबे हुए लम्हात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, एहसास में डूबे हुए लम्हात मुझे, निकल के बाहर चुपके से पानी में भीगना, निकल के बाहर चुपके से पानी में भीगना, नाली में छप छपा कर पानी से खेलना, पहाड़ी की चोटियों से डंगोला फिसलना, डंगोलों को फिर झाड़ी में लाकर छुपाना, निकल के बाहर चुपके से पानी में भीगना, नाली में छप छपा कर पानी से खेलना, पहाड़ी की चोटियों से डंगोला फिसलना, डंगोलों को फिर झाड़ी में लाकर छुपाना, मेरी बचपन ने दी है हंसी सौगात मुझे, मेरी बचपन ने दी है हंसी सौगात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, जामुन की डालियों को झुकाना लटक कर, मस्ती में फल फूल को तोड़ना लपक कर, जामुन की डालियों को झुकाना लटक कर, मस्ती में फल फूल को तोड़ना

लपक कर घर आना फिर शाम को, सुबह से भटक कर सोना बिन खाए ही बिस्तर में थक कर। घर आना फिर शाम को, सुबह से भटक कर सोना बिन खाए ही बिस्तर में थक कर। लुभाती थी मेरी माँ की हर बात मुझे, लुभाती थी मेरी माँ की हर बात मुझे। याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे। जाकर सुबह से खेत की खाड़ी में तैरना, परिंदों को समुंदर के कंकड़ से मारना। जाकर सुबह से खेत की खाड़ी में तैरना, परिंदों को समुंदर के कंकड़ से मारना। बादाम को चुन चुन कर पत्थर से तोड़ना, चिड़ियों के घोंसलों को घर लाकर सजाना। बादाम को चुन चुन कर पत्थर से तोड़ना, चिड़ियों के घोंसलों को घर लाकर सजाना। मोह लेते थे उस वक्त के हालात मुझे, मोह लेते थे उस वक्त के हालात मुझे। याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे। क्यारी के मेहड़ियों में कूदना उछलना, क्यारी के मेहड़ियों में कूदना उछलना। हल जोते मेरे अब्बा तो मुट्ठी को पकड़ना, क्यारी के मेहड़ियों में कूदना उछलना। हल जोते मेरे अब्बा तो मुट्ठी को पकड़ना। पट्टे में चढ़कर खूब क्यारी में घूमना, पट्टे में चढ़कर खूब क्यारी में घूमना। अब्बा के साथ साथ चारे को गाड़ना, पट्टे में चढ़कर खूब क्यारी में घूमना। अब्बा के साथ साथ चारे को गाड़ना। सरहाते थे मेरे अब्बा के आदात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे। सरहाते थे मेरे अब्बा के आदात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे। गाती थी कबूतर गुटुरगु का नगमा, छेड़ी थी कोयल फिजा में तराना। गाती थी कबूतर गुटुरगु का नगमा, छेड़ी थी कोयल फिजा में तराना। जामुन की डाली से हरियल का उड़ना, पत्तों से छन छन के पानी टपकना। जामुन की डाली से हरियल का उड़ना, पत्तों से छन छन के पानी टपकना। क्या खूब लगती थी ये कायनात मुझे, क्या खूब लगती थी ये कायनात मुझे। याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, याद आती है उस गांव की बरसात मुझे। गुलो समर से थी भरी क्यारियाँ, खेतों की जीनत थी हरी बालियाँ। गुलो समर से थी भरी क्यारियाँ, खेतों की जीनत थी हरी बालियाँ। लुभाती थी हर दिल को हरियालियाँ, सज धज के दुल्हन बनी वादियाँ। लुभाती थी हर दिल को हरियालियाँ, सज धज के दुल्हन बनी वादियाँ। याद है आज भी वो जवां रात मुझे, याद है आज भी वो जवां रात मुझे। याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, याद है आज भी वो जवां रात मुझे। याद आती है उस गांव की बरसात मुझे। क्या खूब था बारिश का मौसम मेरे दोस्त, क्या खूब था बारिश का मौसम मेरे दोस्त। बदमस्त था उस वक्त का आलम मेरे दोस्त, क्या खूब था बारिश का मौसम मेरे दोस्त। बदमस्त था उस वक्त का आलम मेरे दोस्त, ना था किसी से कोई भी बरहम मेरे दोस्त। हर दिल था हर दिल का मरहम मेरे दोस्त, ना था किसी से कोई भी बरहम मेरे दोस्त। हर दिल था हर दिल का मरहम मेरे दोस्त, मिले हैं विरासत में वही इनामात मुझे। याद आती है उस गांव की बरसात मुझे, मिले हैं विरासत में वही इनामात मुझे। याद आती है उस गांव की बरसात मुझे। मेरी दूसरी नज्म का उन्वान है तलाश। मैंने रिश्ते के सैलाब में बहकर दिल से दिल तक सफ़र किया है, फकत इसी जुस्तजू में कि कहाँ से फूटता है दिलों में मोहब्बत का अंकुर।

0: इसी जुस्तजू में कि कहाँ से फूटता है दिलों में मोहब्बत का अंगूर। मैंने सीने से लगा कर मासूम बच्चों को उनके नफ्सियात और एहसासात को पढ़ा है। मैंने सीने से लगा कर मासूम बच्चों को उनके नफ्सियात और एहसासात को पढ़ा है माओं के आंचल के छाँव में ममता का साया ढूंढा है। माओं के आंचल के छाँव में ममता का साया ढूंढा है। चक्कर काटे हैं हमने दोस्तों के इर्द गिर्द बुए वफा के लिए। चक्कर काटे हैं हमने दोस्तों के इर्द गिर्द बुए वफा के लिए सिमट कर महबूब के बाहों में उनकी गर्मीय लम्स में खोजा है खुद को। सिमट कर महबूब के बाहों में उनकी गर्मीय लम्स में खोजा है खुद को। मैंने महसूस किया है दर्द मजबूर बेकसों का। झांका है हमने हर एक दिल में हर आंगन में नहीं पाया मगर कहीं भी। झांका है हमने हर एक दिल में हर आंगन में नहीं पाया मगर कहीं भी सुरागे मोहब्बत फिर भी तलाशे मोहब्बत में मैं हो सफ़र हूँ अब भी जाने कहाँ है वो मंजिल कि जहाँ से फूटता है दिलों में मोहब्बत का अंकुर।
1: श्रोताओं, अभी आप सकीना सिराज से ये पूर्व प्रसारित काव्य पाठ सुन रहे थे। अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है।

सोनू निगम, कुणाल गांजा वाला, श्रेया घोषाल, साधना सरगम और शंकर महादेवन की आवाजों में अभी आपने सलामे इश्क फिल्म का ये गीत सुना। बोल समीर के थे व धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत दोस्ताना फिल्म से। स्वर दिया है विशाल ददलानी ने, गीत रचना अन्विता दत्त गुप्तान के हैं व धुन बनाई है विशाल और शेखर ने।

दोस्तों, जिंदगी की किताब का हर पन्ना नया होगा। आज का संघर्ष कल का फक्र होगा। चलते रहो बिना रुके, क्योंकि एक दिन हर सपना सच होगा। इस प्रेरणादायक विचार के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभाग के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
4: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त

0: करने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कंपोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नयनी पांडे।
1: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी, कलकत्ता।
1: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता

0: खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
2: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
3: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक्की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों

ने जताई नाराजगी। चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में दो तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब

0: जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत। भारत ने जोर देकर कहा, नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे फनकार थे मोहम्मद अजीज, मनहर उदास, मेहदी हसन और अशोक खोसला।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने सागर फिल्म से लिया था। स्वर दिया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, बोल जावेद अख्तर के थे व धुन बनाई थी R.D. बर्मन ने। अब आपको सुनवाते हैं पत्थर के सनम फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। गीतकार मजरू व संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फकीरा फिल्म का गाना। गीत व संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में गाने और भी हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
0: ब्रेक के बाद फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है।

0: कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार ये था कातिलों के कातिल फिल्म का गाना। शब्दकार राजेंद्र किशन व आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। अब आपको सुनवाते हैं कहानी किस्मत की फिल्म का गाना किशोर कुमार और रेखा की आवाज़ों में। बोल राजेंद्र किशन के हैं व धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों और बहनों, अरे मगन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओए जर्नल सिंह, ओए जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

श्रोताओं, और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं चोरी मेरा काम फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में, जिसे लिखा है वर्मा मलिक ने व संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको उत्तर भट्टाचार्य का हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन सुनवा रहे हैं। तो आइए पहले सुनते हैं उत्तर भट्टाचार्य का सितार पर बजाया राग भैरव, विलंबित रचना झापताल और 3 ताल में निबद्ध है।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: फसा अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब अंत में सुनिए उत्तर भट्टाचार्य का सितार पर बजाया राग यमन, जो 3 ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप उत्तर भट्टाचार्य का हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शुद्ध देसी रोमांस इस फिल्म से, जिसे सुरों में पिरोया है जिगर सरैया और प्रिया सरैया ने। बोल जयदीप शाहनी के हैं, वधुन बनाई है सचिन जिगर ने।

आइए अब सुनते हैं विशाल ददलानी, के नीति मोहन और बप्पी लहरी की आवाज़ों में फिल्म गुंडे का ये गीत। गीत रचना इरशाद कामिल के हैं व संगीत से सजाया है सोहेल सेन ने।

रघु दीक्षित के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए फिल्म बेकूफियां। इस फिल्म का शीर्षक गीत रघु दीक्षित की आवाज़ में, बोल अनविता दत्त के हैं।

0: अभी आप सुनिधि चौहान और जावेद अली की आवाज़ों में ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दावते इश्क। अब पेश है गुलजार का लिखा एवं शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है किल दिल।
1: आँखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

दम लगा के हैसा। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। वरुण ग्रोवर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
0: श्रोताओं, एक सूचना। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा आज 15 जुलाई को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड नामक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय है बकरी पालन को लाभदायक व्यवसाय कैसे बनाएं। कार्यक्रम में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सांजलि सोरेन विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगी तथा दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देंगी। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूरभाष संख्या 2447 45 अथवा 2445662 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गाता चल को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं सलीम सुलेमान के संगीत निर्देशन में तैयार फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बेल। इस फिल्म का ये गीत बेनी दयाल की आवाज़ में बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं।

अब पेश है इरशाद कामिल का लिखा एवं विशाल शेखर का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत। राहत फतेह अली खां की आवाज़ में, फिल्म का नाम है सुल्तान।

अब सुनिए रितु पाठक, शबाब साबरी और दानिश साबरी की आवाज़ों में फिल्म तेवर का ये गीत। गीत रचना कौसर मुनीर के हैं व संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने।

शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए फिल्म वजीर का ये गीत। गीत रचना विधु विनोद चोपड़ा की हैं तथा आवाज़ें दी हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1328वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
3: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
2: जी,
3: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
2: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
3: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
2: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
3: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
2: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
3: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
2: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
3: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
2: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
3: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
2: जी,
3: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
2: जी।
3: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे, ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से, इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
2: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों

0: मिस्र इसे भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
1: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की।
0: जी,
1: अब ये जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
0: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
1: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे।
0: जी,
1: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित, साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूं विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
0: तो श्रोताओ, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में।
0: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
1: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
0: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ, बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
6: अरे, यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
6: हाँ, वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
6: अच्छा, तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई, चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में

0: मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
0: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
0: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
0: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
0: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
0: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
2: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
0: हाँ।
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
2: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
2: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
2: हाँ।
0: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
0: वही, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौढ़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
1: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रवींद्र

रवींद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की

0: उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माता जी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा, तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय, कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे,

0: जीवन में सदैव वैसे ही काम करना।
1: परंतु माँ, एक अपराध हो गया।
0: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
0: बेटा नरेंद्र, तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
0: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ,
2: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
3: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
4: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
3: क्या सोच रहे हो तुम?
4: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
3: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
4: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
3: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है, तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
2: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
4: प्रणाम महात्मन।
5: जीते रहो पुत्र।
4: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
2: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
5: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
4: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
5: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे बात ही कर रहा हूं। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूं।
2: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया, और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
4: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है, और यही मेरा कर्तव्य भी है।
2: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है। सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम

0: लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1328वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं पाप, इस फिल्म के गीत से, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने। बोल अमजद इस्लाम अमजद के हैं।

आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक, अभिजीत और कृति सघातिया की आवाज़ों में फिल्म सूर्या का ये गीत। गीत रचना समीर के हैं, वधुन बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: श्रोताओं, एक सूचना। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा आज 15 जुलाई को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड नामक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय है बकरी पालन को लाभदायक व्यवसाय कैसे बनाएं। कार्यक्रम में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सांजली सोरेन विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगी तथा दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देंगी। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूरभाष संख्या 2447 अथवा 2456 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रलोक को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं जतिन ललित के संगीत निर्देशन में तैयार फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन का ये गीत। कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में बोल देव कोहली के हैं।

अभी आप श्रेया घोषाल को सुन रहे थे, फिल्म का नाम था तुम। और अब अंत में सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में कोई मिल गया, इस फिल्म का ये गीत। बोल देव कोहली के हैं, वह धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

శ్రోతలు ఇప్పుడు వినండి అంతర్ద్వీప బోటుల రాకపోకల వివరాలు.

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 में हैं। लीजिए अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि यह निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह समझौता एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: This agreement would open up new opportunities.
2: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम।
0: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें यह नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,000

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल कवाली। इस कार्यक्रम में आज के कवाल हैं इस्माइल आज़ाद कवाल।

0: की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, एक सूचना। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा आज 15 जुलाई को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड नामक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय है, बकरी पालन को लाभदायक व्यवसाय कैसे बनाएं। कार्यक्रम में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सांजली सोरेन विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगी तथा दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देंगी। दर्शक इस लाइव फोनिंग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूरभाष संख्या 2447 45 अथवा 2455662 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम महफिले कवाली में। इस कार्यक्रम में आज के कवाल हैं इस्लाइम इस्माइल आज़ाद कवाल।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 पे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला SMS, जिसे हमें भेजा है आसाम से तरुण, राधा, रौनक, ऋषभ, अरुण, सिंघा ने और उनके साथियों ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सपूत का ये गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू और साधना संगम ने।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में राम अवतार, इस फिल्म का ये गीत। और इस गाने की फरमाइश की है हमें महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे, रियांश लोखंडे और पूरे लोखंडे परिवार की ओर से।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें विंबरलिंगन से डेविड और सोनी ने। ये सुनना चाहते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये गीत, और इस गीत को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में सत्ते पे सत्ता। इस फिल्म का ये गीत और इस गाने की फरमाइश की है हमें सिपी घाट से अमृत और मुस्कान ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें चिड़िया टापू से यास्मीन और सुनैना ने। ये सुनना चाहते हैं होती होती प्यार हो गया, इस फिल्म का शीर्षक गीत, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने।

इसी के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री

0: अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सांणंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100

0: 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
1: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
1: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
2: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इंदौर से अबूधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आग्रह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को कल तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव फोन और फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें अपना नंबर मैसेज करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं उन तमाम श्रोताओं से जो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हाँ सर
0: जी, हमारी बात हो रही है गौरी शंकर जी से, जो कि हैं राजस्थान से।
1: जी,
0: कैसे हैं आप?
1: हाँ, आनंद मंगल है सर, बढ़िया
0: जी। और इन दिनों क्या कर रहे हैं वैसे आप?
1: मैं तो रिटायर हुआ हूँ, 15 साल हो गए रिटायर हुए।
0: अच्छा,
1: और आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: जी,
1: जनमानस वगैरह। ये
0: किस तरह के कार्यक्रम आपको ज़्यादातर पसंद है?
1: ज़्यादातर मैं तो यही है, सुबह के जो रामचरितमानस आते हैं जगह
0: जगह से, जी
1: उनके सुनते हैं और न्यूज भी सुन लेते हैं।
0: जी,
1: राम नाम लिखते भी हैं हम कॉपियों में।
0: जी, अच्छा।
1: सुबह जल्दी उठते हैं, घूमने भी जाते हैं, योगा में जाते हैं आदि आदि।
0: जी, अच्छा लगा कि आप कार्यक्रम सुनते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। तो बताइए, आज किस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, आज आप सुना दो, भूषण पहाड़ों का है वो, रामतीर गंगा मेली का गाना।
0: जी,
1: इसमें एक लाइन बहुत बढ़िया है
0: जी,
1: कि जो है, प्यार में रास्ता कट गया तो प्यार में रास्ता तो क्या पूरी जिंदगी कट जाती है। प्यार वो चीज़ है भगवान की।
0: जी, जरूर।
1: ये इसमें लाइन अच्छी है।
0: जी, और आप अपने दोस्तों का नाम देना चाहेंगे?
1: हाँ, दोस्तों लो, सत्यनारायण जी जाड़ोलिया, नाना लाल जी पारा सर, और अपने सत्यनारायण जी टेलर, ये सब है। आप ये कार्यक्रम कब देंगे?
0: जी, अभी ये आपका लाइव चल रहा है?
1: लाइव चल रहा है।
0: जी,
1: हम तो इसको टेप कर लेते वरना।
0: नहीं, लाइव चल रहा है। चलिए सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ, जरूर।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: नमस्कार मैडम। मैं चिरमी
0: जी नमस्कार,
1: कुरासिया
0: इंद्रभान सिंह जी से बात हो रही है छत्तीसगढ़ से, जो कि है।
1: मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी परेड में हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: और यहाँ
0: तो
1: तो
0: आप बहुत ही व्यस्त
1: है।
0: है ना?
1: जी यहाँ बादल किया है और दोपहर में 12 बजे करीब पानी गिरा है।
0: जी जी
1: और बादल किया है, हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर पानी गिरेगा, उमस टाइप का है।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: आज दिशा मूर्ति मनोरम के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है जख्मी और गीत
0: जी
1: के बोले जलता है जिया मेरी भीगी भीगी रातों में, गायक किशोर कुमार, आशा भोसले, सुनील
0: जी
1: दत्त, इनके फिल्म का गाना है।
0: जी
1: सबसे पहले गीत आपको, के निर्देशक साहब को, पूरे भारत राज के श्रोता को, आकाशवाणी विजयपुर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन के रिश्तेदारों को, सभी उद्घोषक भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारी को, हाल एकता रेडियो प्रणाली ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राज के श्रोता को दूर कह मैडम। अब इंतजार कर रहा हूँ अपने पसंद के गीत सुनने के लिए, फोन
0: जी जरूर जरूर सुनाएंगे। आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं। चलिए हम आपसे और वार्तालाप नहीं करते हैं और आपको आपकी पसंद का ये गीत सुनाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: जी हाँ
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है शंकर लाल जी से, जो कि हैं महाराष्ट्र से।
1: जी हाँ जी हाँ
0: कैसे हैं आप
1: बस बढ़िया है।
0: जी, और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
1: अभी बस आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: इस वक्त आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना? इसके अलावा
1: जी
0: क्या
1: हाँ
0: करते हैं वैसे आप?
1: अभी तो कुछ नहीं, अभी जनवरी से जून तक का आइसक्रीम शॉप में काम करता हूँ,
0: अच्छा,
1: और
0: बताइए।
1: उसके बाद
0: जी
1: हाँ
0: जी जी और हमारे इस कार्यक्रम के कार्यक्रम आप लगातार सुनते हैं
1: जी हाँ जी हाँ
0: जी, और किस तरह लगता है आपको हमारे कार्यक्रम?
1: आपका प्रसारण भी बहुत क्लियरिटी मिलता है, प्रसारण भी बहुत अच्छा होता है। आपकी टीम पूरी श्रोताओं का ख्याल रखती है, हर व्हाट्सएप मैसेज हो या फोन इन कॉल हो
0: जी,
1: सही टाइम पे अटेंड करती है, और उनके चॉइस के गाने भी बजते हैं।
0: धन्यवाद, शुक्रिया। बताइए, आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: आज डॉन फिल्म से जिसका मुझे था इंतजार ये गीत सुनना चाहिए
0: आप अपने दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
1: जी, कमलकांत गुप्ता, दिनेश काले है और हमारा जायसवाल परिवार।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं सबों के साथ ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो डियर फ्रेंड, इंदौर से अनिल कौशल्या बात कर
0: जी,
1: रहे
0: अनिल जी से बात हो रही है। कैसे हैं अनिल जी आप?
1: हैं। इसमें बैंक में है, वहीं से बात कर रहे हैं।
0: जी, तो आप बिजी हैं है ना?
1: और आज हमको गुनाह मूवी का गीत सुनवा
0: जी
1: दीजिए।
0: जी जी जी जरूर।
1: कौन है तुम? तुमको दिल ये दीजिए, ये भी ना पूछा कौन हो तुम।
0: जी
1: बाबुल
0: सर,
1: तो अलका याग्निक की आवाज होगी।
0: जी जी जरूर। और दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: हम आपके साथ और आकाशवाणी विजयपुरम की पूरी टीम के साथ ये गीत सुनना चाहेंगे।
0: तो चलिए सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
2: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस लाइव फोन और फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले श्रोताओं से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
3: जी मैम, जय श्री माता
2: जी। नमस्कार, हमारी बात हो रही है शिवाजी से, जो कि है मध्य प्रदेश से।
3: जी मैम, मैं शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूं।
2: कैसे हैं आप शिवाजी?
3: मैम मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके कॉल का इंतजार था, आपने कॉल कर दिया तो और अच्छा हो गया।
2: और अच्छा हो गया जी, जी। और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
3: मैम देखिए, इन दिनों तो पौधरोपण करने का प्लान था, पर वर्षा ऋतु जो है मध्य प्रदेश से रूठी हुई है।
2: नहीं, तो नहीं, ऐसी पानी है। मौसम का करवट कभी भी बदलता है ना, रुक कभी
3: पर
2: नहीं।
3: अभी तो मैम ऐसा गर्मी पड़ रहा है जितना गर्मियों में नहीं पड़ा, इतनी तेज गर्मी है और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मैम।
2: भी नहीं हो रही है जी जी, जी। चलिए हम उम्मीद तो बस लगा कर बैठ सकते हैं कि जल्द से जल्द बरसात हो और आप पौधारोपण कर सके, है ना?
3: जी मैम, अब तो अपन लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं, ऊपर वाले से दुआई कर सकते हैं।
2: जी जरूर,
3: और बाकी जैसा वो रखेगा वैसा हम रहेंगे।
2: जी जी वो तो है। बताइए आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत है जो सुनना चाहते हैं?
3: मैम देखिए, मूवी का नाम है आशिक
2: जी,
3: उसमें एक गाना रहेगा, ओ मेरे ढोलना ओ मेरे साजना
2: जी, जी।
3: मैं तेरी हो गई शुद्ध बुद्ध खो गई
2: जी। और आप अपने दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
3: मैम मेरे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी, रहेंगे राजस्थान से, बदरुआ से रहेंगे पुरुषोत्तम कुमार जी, अविनाश जी, और हमारे मित्र रहेंगे गजराज लोधी, कल्याण सेन, भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति जी, रमेश पात्रे जी, अमल जी, बिमल जी और तमाम सुनने वाले, स्पेशली आप।
2: जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो चलिए सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है दिलावर खान जी से, जो कि है दिल्ली से। कैसे हैं आप दिलावर जी?
1: मैं रघुवीर नगर से, दिल्ली से दिलावर खान, और हमारी फैमिली के नाम है हसीना बानो,
0: जी जी
1: अलीजा, नायाब और लड्डू।
0: जी जी जी कैसे हैं आप
1: और मुझे
0: दिलावर
1: बड़ी
0: जी?
1: खुशी हुई, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जो आज मेरी कॉल यहाँ लगी है।
0: जी, हमें भी अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए कि आप इतने दिनों के बाद हमसे जुड़े हैं, है ना।
1: हाँ जी,
0: बताइए, इन दिनों क्या कर रहे हैं वैसे आप?
1: हम जो है, ये हमारा सिलाई का काम है, और ऐसे हम थोड़ा से घर पे ही सिलाई का काम कर रहे
0: सिलाई
1: हैं।
0: का काम कर रहे हैं जी। और हमारे कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनते हैं?
1: हाँ जी, कार्यक्रम आपके बहुत बढ़िया होते हैं।
0: जी, धन्यवाद, शुक्रिया। और आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: आज जो गीत है जो मैंने पसंद किया, फिल्म आंखें हैं,
0: जी
1: और गाने के बोल हैं, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। ये
0: जी
1: बहुत खूबसूरत फिल्म है,
0: जी जी
1: और ये धर्मेंद्र जी और हीरोइन माला सिन्हा,
0: जी जी
1: हाँ जी, ये उनके ऊपर फिल्माया गया। दोनों बहुत अच्छी फिल्म है ये। हाँ
0: जी जी जी और आप अपने दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
1: जी, मेरे दोस्त हैं पश्चिम बिहार से नीरज अग्रवाल, उत्तम नगर से भोजराज पोरवाल, और टैगोर गार्डन से राजेंद्र रविंद्र सिंह था।
0: जी। तो दिलावर जी, चलिए सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है जी, नमस्कार।

0: कभी कभी।
1: हेलो डियर फ्रेंड्स,
0: जय माता दी।
1: जय माता दी। जी नमस्कार, हमारी बात हो रही है पूर्ण वर्मा जी से, जो कि है जयपुर राजस्थान से।
0: जी मैडम, मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंचल बुगला।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
1: और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
0: बस मैडम इन दिनों खेतों में फसल लगाई थी तो थोड़ा बारिश कम है, इसलिए इंतजार है बारिश का मैडम। जी
1: जी, सबों को बारिश का इंतज़ार है ना?
0: क्योंकि अब मैं अभी बाजरे की फसल लगाई थी मैडम, 15 दिन हो गए, पर वो बारिश का
1: जी
0: इंतजार
1: जी
0: है ना, अगर
1: जी
0: बारिश नहीं आई तो धूप इतनी पड़ती है कि वो जल जाएगी मैडम।
1: जल जाती है। हाँ जी जी जी बताइए, आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ?
0: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा पापा कहते हैं
1: जी
0: और उसमें गाने के बोल है, प्यार में क्यों होता है जादू, तू जाने या मैं जानू, ये
1: जी
0: गाना
1: जी जी ज़रूर
0: ये सब।
1: सुनवाएंगे। और आप अपने दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे तो बोल सकते हैं।
0: जी सबसे पहले तो आप हैं
1: जी शुक्रिया।
0: और मेरा दोस्त है राकेश।

0: भगवान सिंह जी है, रमेश पात्र है, और अभिनाथ जी है, संगीता जी, आशुतोष देवनाथ, पूर्णिमा मैडम है जो स्कूल लाइन विजयपुरम से है,
1: जी,
0: और जितने कॉलर लाइव सुनने वाले तमाम श्रोताओं।
1: तो चलिए सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो
1: हेलो
0: जी, हमारी बात हो रही है अजय जी से, जो कि है श्री विजयपुरम से. जी, मैंने सही कहा ना? हेलो
1: जी
0: जी अजय जी, वैसे करते
1: मैम,
0: क्या हैं आप?
1: मैं भी पीजी कर रहा हूँ
0: जी, स्टूडेंट हैं आप?
1: जी।
0: जी, कॉलेज से अभी पीजी कर रहे हैं. हेलो, आपकी आवाज़ कट कट कर आ रही है, आप खुलकर बात करिए. हेलो
1: हेलो,
0: जी, अजय जी, आप पीजी कर रहे हैं ना?
1: यस मैम।
0: जी, तो किस क्षेत्र में कर रहे हैं, मतलब कौन सा विषय आपने चुना है?
1: जी मैम, मैं पीजी और हिंदी में कर रहा हूँ।
0: हिंदी से कर रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है. और इसके अलावा और कुछ पार्ट टाइम जॉब या फिर कोचिंग क्लास तो जाते ही होंगे आप, है ना?
1: जी मैम, कोचिंग क्लास जा रहा हूँ। आईटी कॉलेज ही है, पार्ट टाइम कोई जॉब नहीं है फिलहाल।
0: अच्छा, तो कॉलेज आप रेगुलर कर रहे हैं ना?
1: जी हाँ, मैं
0: ओके,
1: रेगुलर।
0: अच्छा, अच्छी बात है. और इन दिनों कोचिंग क्लास भी जा रहे हैं, हमारी
1: जी
0: दुआएं हैं कि आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए और कामयाबी आपके कदम चूमे. बताइए, आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है, मेरे
0: जी
1: जैसा यार कहा।
0: जी
1: ये
0: जी
1: मैं अपने कुछ दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता
0: ज़रूर
1: हूँ,
0: ज़रूर, नाम बताइए आप उनका.
1: जिनके नाम है कुणाल,
0: जी
1: अंकुश, पवन, अनुज, सुजीत, अशोक।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं ये गीत. हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कुछ रिश्ते खामोश होते हैं पर सबसे खास होते हैं। हर बात कहने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ एहसास नज़रों से ही समझ आते हैं।

श्रोताओं, कुछ रिश्तों में ना वादे होते हैं, ना कस्में और ना कोई दिखावा, पर फिर भी वे दिल के सबसे करीब होते हैं।

श्रोताओं, कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं, फिर भी दिल उन्हें अपना मान लेता है। चाहे जितनी दूरियां आ जाए, ये दिल बस उसी का नाम लेता है।

श्रोताओं, कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं दिल के सुकून से बनते हैं, जहां बातों से ज़्यादा खामोशियां समझी जाती है। दोस्तों, सच ही कहा गया है, रिश्तों का गुलाब तभी महकता है जब दोनों उसे संवारते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे।
1: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
3: सिलना मिनी रॉक रहमांग इंगरे तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्ज़ रामांग इलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग। मिनका तलुन ही इंगला हराब इन मिने कैटेगरी वाइज मिने फाइनल मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स में अप्लाइंग एम एडमिशन मिने तरुल कांगन यूजी कोर्सेस एलगम JNRM कंस्टिट्यूएंट कॉलेज गम NSC PIHL गम टीम यूनिवर्सिटी श्री विजयपुरम इंगम अकेडमिक सेशन 2026-27 न अपलोड इब्तहरसिन अलांगो जुलाई चिंगे तनेट कई निरणय तफुल उनोइडिट इन लहन अटेंडिंग मिने तारोकरे गाचमल मिन्न क्लेम्स हेक ऑब्जेक्शन इंगम कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल वेबसाइट https://collegeadmission.andamannicobar.gov.in गाचमल नके कारण मिने काउंसलिंग इब तने रनाय अला गोजुलाय चिंगे तनेट कई निरनाय तफुल गाजिब हे किन तन अब एडमिशन जामिन ngachang ipri tak aja ana ki tenu fees re ngach ngamranul ten nu classes min na ip tena dana sat ala ngajinge iprane school me candidates to attend ngam counseling asa mine category final merit list na hol re tenu serial number hek session wise subject wise ta ke tu ip tarting hat mine ni general candidates न हो तो न ये तकु इरे तंगम काउंसलिंग आसा इन लाहन जा न इमात मिने मेरिट होल्डर ते मिने सीरियल नंबर गज इंगम तला सकाम काउंसलिंग सेशन मिन न कंटक ये नुप्त ओर तिट रन सीट उन्होंने किन्हीं तंगम काउंसलिंग इम तला

0: ngajin dai hang tin ke ke ti ke nya me quires al ngam sin james the great minyu terasa ha yang atil ngang ne sin tagamu he ki nuri chang rong i taka sa ta i the fan kan ro ta la hara nga yen
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 11वीं कड़ी।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Depression क्या है? जानिए लक्षणों और इलाज के उपाय इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। हम सभी ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर स्वयं को उदास और हताश महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। परंतु अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है, तब यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस समस्या से ग्रस्त है। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। डिप्रेशन किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना ज्यादा होती है। मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन का असंतुलित होना, गर्भावस्था और अनुवंशिक विकृतियां भी डिप्रेशन का कारण हो सकती है, दैट मींस हेरिडिटरी। लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि माध्यम से लेकर बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, जिनके सफल इलाज के लिए गहन परीक्षण जरूरी है। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना, स्वयं को अयोग्य या दोषी मानना, एकाग्र रहना तथा फैसले लेने में कठिनाई होना, लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम सोना, सारी गतिविधियां धीमी होना, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, बेचैनी या आलस्य महसूस होना, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से 5 या उससे अधिक लक्षण 2 सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक बने रहते हैं, तो DSM-5 यानी परीक्षण तकनीक के अनुसार इसे डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन यह मरीज को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जैसे थकावट, दुबलापन या मोटापा, हार्ट डिजीज, सर दर्द एक्सेट्रा। इसी कारण कई बार मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भटकते हैं।

लेकिन इन लक्षणों की जड़ में छुपे डिप्रेशन पर ध्यान नहीं जाता। डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत एक मनोरोगी चिकित्सा से मिल सकती है। डिप्रेशन के कारण का पता करने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करना बहुत जरूरी है। आजकल डिप्रेशन के लिए कई सारे अलग अलग इलाज उपलब्ध है। एक साइकियाट्रिस्ट डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है। काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, दवाइयां या मिक्स ट्रीटमेंट। सही इलाज के बाद डिप्रेशन के मरीज में से अधिकांश पूरी तरह ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाते हैं। अगर आपके किसी परिचय या आपको डिप्रेशन है तो आप इस तरह उस व्यक्ति और अपनी सहायता कर सकते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें। इस समस्या को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और इसके लिए अपने चिकित्सक की सलाह लें। अपने आप को अकेला न रहने दें। दोस्तों के साथ बाहर जाएं, लोगों से मिले जुले गपशप करें। खुद के लिए अनरियलिस्टिक गोल्स न बनाएं। सुबह शाम टहलने जाएं। अपने आप को काम में व्यस्त रखें। उदासी भरे गाने न सुने। दिल ही दिल में घुटने के बजाय अपनी बात किसी विशेषज्ञ या फिर साइकोलॉजिस्ट से करें या फिर काउंसलर से करें। काम को करने के नए तरीके खोजें और नए नए रास्ते से गुजरें। अगर आप दुखी हैं तो भी ऐसा अभिनय कीजिए जैसे आप बहुत खुश हो। सिर्फ एक्टिंग करने में क्या जा रहा दोस्तों, थोड़ी सी एक्टिंग आपके लिए, खुद के लिए भी करिए। सहकर्मियों के साथ हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जब हम रोते हैं तो कोई नहीं रोता। हंसने पर दुनिया साथ में हंसने को तैयार हो जाती है। सकारात्मक बातें पढ़िए और बोलिए। आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग का फायदा उठाए। हो सके तो कुछ कोर्स ज्वाइन करें। योग का सहारा ले और प्राणायाम रोज करें। राइट ब्रीथिंग विल डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू। रात में सोने के एक घंटे पहले टीवी बंद कर दे और अपना मोबाइल भी बंद करे। आजकल के डिस्ट्रैक्शन से बचे। हैव अ डीप एंड नाइस स्लीप। डिप्रेशन एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है जिससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होती है। डिप्रेशन पागलपन नहीं होता है और डिप्रेशन के अधिकांश मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। डिप्रेशन के इलाज के लिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। इस समस्या से निजात पाने में चिकित्सक और मरीज के साथ साथ उसके परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी होता है। यूं तो डिप्रेशन की रोकथाम का सबसे बड़ा उपाय यही है कि नकारात्मक विचारों को दूर रखने का प्रयास करें और जितना हो सके सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहे। लेकिन कुछ बिंदु है जो बहुत महत्व रखते हैं। अपने जीवन की हर परिस्थितियों में आपके साथ कुछ लोगों का हमेशा साथ होना चाहिए। कुछ ऐसे फैसले जो डिप्रेशन की वजह बनती है, जैसे नौकरी बदलना, प्रेम करना, विवाह या तलाक लेना। ऐसे फैसले अकेले न करें। हमेशा उन लोगों से राय ले जो सालों से आपके करीब है। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें। जितना हो सके डिप्रेशन के बारे में पढ़ें और जानें ताकि आपके मस्तिष्क जागरूक रहे। शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन से बचें। तो दोस्तों, यह थी डिप्रेशन से निजात पाने के तरीके। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहा होगा। इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी साथियों से शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039।

09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

पहले आज के शेष कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में आप आधुनिक गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6 बजे आप सुनेंगे डॉक्टर बी गंगैया के साथ की गई बातचीत। विषय होगा धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन। शाम 6:30 पर सुनिए दर्द भरे नगमे। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे संध्या 7:15 पर। संध्या 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या 7:30 पर आप सुन पाएंगे विश्व कौशल दिवस पर चर्चा, तत्पश्चात गीतों भरी कहानी। रात 8 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। रात 8:15 पर आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा की प्रस्तावना, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रोजगार समाचार और गौरवगान का समय रहेगा रात 8:30 और रात्रि 10 बजे सरगम कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। सुबह 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 5:55, जिसमें जानकारी का विषय होगा वायु स्वासी मछलियाँ। सुबह 6:10 पर बताया जाएगा जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा रास्ता शीर्षक पर। रामचरित मानस गान का समय रहेगा सुबह 6:30, सवेरे 6:40 पर प्रसारित होगा वतन के गीत कार्यक्रम। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा सवेरे 6:50 पर। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। सवेरे 7:15 पर सुनिए फिल्मी देश भक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी, जबकि FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण कार्यक्रम में आप सुनेंगे रिटायर्ड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर श्री भानु प्रताप यादव के साथ ली गई भेंट वार्ता। सवेरे

8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगी मीनू पुरुषोत्तम और ताहिरा सईद। तराने सुहाने कार्यक्रम का आनंद लीजिए सुबह 9 बजे। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप MS शीला का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। SMS माई चॉइस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे, दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दिन में 11:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे कुछ सुप्रसिद्ध गीत सुनवाए जाएंगे। दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में आप एक ही फिल्म के गीत सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर कलाकार होंगे बेगम अख्तर और गुलाम अली। आपके नाम फिल्मी पैगाम फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी और प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति के बाद FM 100.9 MHz पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें आप नॉनस्टॉप म्यूजिक का आनंद लेंगे। और दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम यूं ही गाते रहोगा का।

श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:45 में हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

अभी आप अभिजीत का गाया बेवफा फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे समीर तथा संगीतकार थे नदीम श्रवण। अब संदेश संदलिया के संगीत निर्देशन में तैयार कार्यक्रम का अगला गीत है उफ क्या जादू मोहब्बत है फिल्म से। आवाज़ें हैं चित्रा और सोनू निगम की तथा इस गीत को लिखा है महबूब ने।

सोनू निगम और चित्रा के गाए उफ क्या जादू मोहब्बत है फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बाहरों की शाम समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम। वणक्कम नेयर्गले।

0: अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे बांग्ला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र থেকে শুরু করছি আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 438.6 মিটার অর্থাৎ 684 কিলো হার্টজ থেকে।

अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार और साथियों आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। किसान साथियों, जीवन में जो मिला है उसमें संतोष रखें और ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। जब कृतज्ञता और संतुलन जीवन में आ जाता है तब मनुष्य बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक सुख का अनुभव करता है और यही जीवन को सही अर्थों में सुखी बनाने का मार्ग है। आज के इन्हीं विचारों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। जी हाँ साथियों, आज का हमारा प्रश्न है कि रजनीगंधा के फूलों का प्रवर्धन कैसे किया जाता है, बीजों से या फिर कंदों से। साथियों प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। भाइयों, आज आपको बताना है कि रजनीगंधा के फूलों का प्रवर्धन कैसे किया जाता है, बीजों से या फिर कंदों से। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही जवाब आपको अवश्य ही बताएंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: साथियों, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं श्रीमती जसिंता बाघे जी से, जिनसे आज बातचीत का विषय है धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन। तो चलिए साथियों, करते हैं इनसे मुलाकात और लेते हैं इस विषय में ये जानकारी।
2: मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे इन द्वीपों में धान की फसल होती है तो उसमें बहुत सारे खरपतवार आते हैं, तो मुख्य खरपतवार यहाँ पर कौन कौन से देखे गए हैं?
3: धान की फसल में मुख्यतः तीन प्रकार के खरपतवार आते हैं। पहला है घास वाले,
2: अच्छा,
3: जैसे कानुकुआ क्रसगैली, कानुकुआ कोलोनम, और दूसरे है सेजेस मोथा जिसको कहते हैं, साइप्रस टिफॉर्मिस, साइप्रस एरिया एक्सेट्रा, और फिर ब्रॉड लीफ वाले,
2: पत्ती वाले,
3: चौड़े पत्ती वाले, जैसे मोनोकोरिया, लुडविगिया, मार्सिलिया।
2: अच्छा, तो ये सब जो खरपतवार हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं, तो इन खरपतवारों का धान की फसल में मोटे तौर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा नुकसान होता है?
3: ये खरपतवार पोषक तत्वों, पानी, सूर्य के प्रकाश तथा स्पेस के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा उपज और गुणवत्ता में कमी कर देते हैं। ब्रॉडकास्टेड पैडी में देखा गया है कि ये उपज 20 से 25% तक कम हो जाती है।
2: यानी जो

0: छिड़ते हैं, डायरेक्ट छिड़ते
1: हैं उसमें 20-25% तक की कमी देखी गई है।
0: अच्छा।
1: और ट्रांसप्लांटेड धान में 10-15% तक।
0: अच्छा।
1: इसके अलावा ये अल्टरनेट होस्ट की तरह काम करते हैं और कीट और व्याधियों को बढ़ाते हैं, उनका इन्फेक्शन जो होता है उसे। अच्छा। बढ़ाते हैं,
0: मतलब कीड़े और बीमारियों के लिए एक सहारे का काम,
1: सहारे का काम करते हैं। और कटाई की दक्षता में कमी कर देते हैं, लाइन का वैल्यू कम कर देते हैं, तथा इसके अलावा पानी को कंटामिनेट करते हैं।
0: अच्छा, पानी का भी प्रदूषण इनसे हो जाता है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत सारा नुकसान होता है। चलिए, तो ये जो धान की फसल का जहाँ तक सवाल है, तो जैसा आपने कहा कि अक्सर यहाँ किसान भाई तो जो रोपते हैं नर्सरी से निकाल के उसमें 10-20% नुकसान कर देते हैं, तो ये किसान भाइयों को शायद पता नहीं रहता, सोचते हैं कीड़े और बीमारियों से ज़्यादा,
1: क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिखता नहीं है कि नुकसान हो रहा है।
0: जी हाँ, लेकिन नुकसान काफ़ी होता है। तो अब सवाल उठता है कि जैसा खरपतवार है, तो इसमें जो धान और खरपतवार के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है और उसके बाद जो नुकसान होता है, तो कौन कौन सी अवस्था में ज़्यादा नुकसान होता है?
1: ये उनका क्रिटिकल स्टेज ब्रॉडकास्ट जो पैडी है उसमें है, सोइंग के 15-45 दिन के बीच,
0: यानी जो धान को हम सीधे मतलब खेत में डालते
1: हैं उसमें ये क्रिटिकल स्टेज है
0: 15-45 दिन के
1: प्रतिस्पर्धा के।
0: अच्छा।
1: और उसी तरह ट्रांसप्लांटेड का आपका आएगा 30-45 दिन, ट्रांसप्लांटिंग करने के, रोपाई करने के 30-45 दिन के
0: बाद बीच में जो,
1: बीच का जो स्टेज है उसमें,
0: तो उस समय मतलब बहुत ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल खरपतवार खेत में ना हो, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा
1: क्रिटिकल स्टेज है, नहीं तो फिर आपका इकोनॉमिक यील्ड कम हो जाएगा,
0: उत्पादन बहुत कम हो सकता है। तो इन खरपतवारों को जो नियंत्रण करना है, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं, इसका प्रिवेंशन या उनको बचाव कैसे कर सकते हैं?
1: आपको इसके लिए शुरू से ही ध्यान देना है, अगर कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, जैसे खरपतवार रहित मतलब जो सीड्स हैं,
0: बीज
1: साफ हैं जिसमें खरपतवार के बीज शामिल ना हो।
0: अच्छा।
1: और नर्सरी साफ रखें, फिर उपयोग में आने वाले टूल्स, फातू गैंती जो भी है, वीडर, वो सब साफ हो, और सिंचाई वाले इरिगेशन जो नाले होते हैं उनमें भी, वो भी साफ हो, मतलब बीड ना हो उसमें।
0: अच्छा, तो यानी ये सब जरिए, इसके जरिए खरपतवार पहुंच सकता है, मतलब बीज में अगर पहले से खरपतवार के बीज हैं तो मुख्य खेत में पहुंच जाएगी, और जैसे इम्प्लीमेंट्स हैं, खुद जो लोग जाते हैं वो भी अपना ध्यान रखना चाहिए।
1: साफ सुथरा का ध्यान रखें।
0: अच्छा, तो इसके लिए किस तरह के मतलब प्रैक्टिसेस या किस तरह के काम किसानों को करने चाहिए खरपतवार ज्यादा ना हो?
1: इसके लिए शुरू से ही समर प्लाविंग करें, रोपाई से पहले अच्छी तरह खेत की तैयारी करें, और नर्सरी में चारा बीज दोनों को साफ रखें, देखिए नर्सरी में भी से भी मेन फील्ड में खरपतवार ना जाए, और कतारों में रोपाई करें ताकि उसके बाद जो वीडिंग का जो ऑपरेशन होगा वो करने में आसानी मिलेगी, और टॉल ग्रोइंग वैरायटीज हमेशा मतलब ज़्यादा कम कर पाते हैं।
0: अच्छा, उसमें जो लंबी होती है, जो
1: जी स्पर्धा कर सकते हैं, तो उनको प्रेफर करें, और अगर स्पेसिंग भी आप मेंटेन कर सकते हैं, क्लोजर स्पेसिंग, हाई डेंसिटी रहेगा तो ये खरपतवार का ये प्रॉब्लम कम आएगा।
0: अच्छा।
1: इसके अलावा जब भी आप उर्वरक का प्रयोग करें तो पहले खरपतवारों को निकाल लें उसके बाद करें, और जल प्रबंधन का भी आपको खास ध्यान रखना है, अगर आप सबमर्जेंट रखेंगे, कंटिन्यूस सबमर्जेंट, तो खरपतवार कम आएगा।
0: अच्छा, पानी मतलब बराबर
1: बना रहेगा तो खरपतवार कम आएगा, अगर एकदम सुखा देंगे अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग, तो उसमें खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा रहेगा।
0: अच्छी बात है, तो मतलब ये सब कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अगर ध्यान दें तो खरपतवारों का प्रबंधन हो सकता है। और अगर खरपतवार खेत में अगर आ गए हैं, तो अब सवाल उठता है कि उनका नियंत्रण या उनको कैसे निकालें, तो इसके भी अलग अलग तरीके होंगे।
1: जी, इसमें है कि फर्स्ट है हैंड वीडिंग, इसमें आपको ये बहुत ही आम, सस्ता और प्रभावी तरीका है,
0: मतलब हाथ से, मतलब सीधे जो हम लोग
1: निकाल लेते
0: हैं,
1: हाथ से निकालते हैं, या फिर कुछ टूल्स, सिकल्स, होज, फातू, ये सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा खर्चीला होता है, लेबर इंटेंसिव है, इसलिए
0: बहुत सारे लोग चाहिए।
1: तो आप मैकेनिकल मेथड्स में जा सकते हैं, यांत्रिक तरीका, किसी भी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे रोटरी और कोनोवीडर बहुत ही इसके लिए फायदेमंद है।
0: कोनोवीडर से तो काफ़ी अच्छा से वीडिंग हो जाता है, बस स्पेसिंग बड़ा अच्छा होना चाहिए
1: जी। इसके लिए है कि आप पंक्तियों में रोपाई करें, और कोनोवीडर क्या है, दो पंक्तियों के बीच फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पुश करके आप जो भी वीड है उसे आप मिट्टी में ही इनकॉर्पोरेट कर देते हैं।
0: अच्छा।
1: इससे फायदा ये भी होता है कि आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाता है,
0: बिल्कुल,
1: तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, यील्ड में तो फर्क दिखता ही है।
0: तो इसमें मतलब ज्यादा श्रमिक की जरूरत भी नहीं है, अकेला किसान भी मतलब खेत में मतलब खरपतवार निकाल सकता है कोनो वीडिंग से, लेकिन आपने जैसा बताया कि इसके लिए कतार में
1: करना जरूरी है, थोड़ा करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही, और कोनो वीडर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं,
1: 300-400 रुपए में आ जाता है।

0: को मिल जाता है। तो आपने क्या देखा है, किसान यूज़ करते हैं इसका, इस्तेमाल करते हैं?
1: हमारे फार्म्स में तो हम लोग उनको दिखाते हैं डेमोन्स्ट्रेट करके, कोई कोई जो प्रगतिशील है
0: कृषक हैं वो तो उसमें करते हैं। अब इसके अलावा और क्या तरीका, कुछ रासायनिक तरीका भी होगा?
1: जी हाँ, रासायनिक तरीका आजकल बाजार में कुछ रसायन ऐसे मिलते हैं जो कि इसका नियंत्रण करने में सक्षम है। दो तरह के यूजुअली पाए जाते हैं, एक प्री इमर्जेंस, एक पोस्ट इमर्जेंस।
0: अच्छा, एक मतलब वो खरपतवारों को निकलने से पहले
1: ही मार देते हैं, उनको प्री इमर्जेंस कहते हैं। अच्छा। और एक अगर निकल गए तो उसके बाद में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो धान की फसल के लिए प्री इमर्जेंस में आपका बहुत ही प्रमुख है ब्यूटाक्लोर, जिसे आप रोपाई करने के 5 से 7 दिन के अंदर में 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से यूज कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा एनिलोफोस है, जो भी आप 5 से 7 दिन के अंतराल भीतर 1.5 लीटर पर हेक्टेयर की दर से आप यूज़ कर सकते हैं।
0: अच्छा, ये दो दवा खरपतवारों को खत्म कर सकती है। तो आपने ऐसा कहा कि 15 से 45 दिन का बीच का समय होता है, तो 5-10 दिन के अंदर डाल देना चाहिए, लेकिन ताकि पहले से ये निकले ही ना।
1: निकले ही नहीं, अगर निकल गया तो आप पोस्ट इमरजेंस भी है, जैसे प्रोपानिल है, उसे आप 7.5 लीटर पर हेक्टेयर की दर से, जब वीट का स्टेज 1 या 2 पत्ती का होता है, खरपतवार जब 1 या 2 पत्ती का स्टेज में आ जाता है तब आप डाल सकते हैं।
0: अच्छा, 7.5 लीटर एक हेक्टेयर के लिए चाहिए प्रोपेनॉल आपने कहा।
1: जी।
0: अच्छा, तो ये दवाइयाँ सब जो आपके डिपो हैं वहाँ पर कुछ कुछ उपलब्ध हो जाती हैं?
1: एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ उपलब्ध है, और ना हो पाए तो आजकल प्राइवेट एजेंसीज भी है जिनके पास लाइसेंस है, वो मंगाते हैं,
0: वहाँ से मिल सकता है।
1: जी,
0: अच्छी बात है। तो देखिए, आजकल चाहे वो खरपतवार नियंत्रण हो, चाहे बीमारियों का या कीड़ों का नियंत्रण हो, एक समन्वित उपाय पर जोर दिया जाता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच जो बोलते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए, प्रबंधन के लिए जो समन्वित उपाय क्या क्या हैं, कैसे करें शुरू से?
1: इसके लिए आपको है फर्स्ट कि जमीन की तैयारी अच्छी तरह से करें, समर प्लाविंग करें, जितने भी स्टबल्स है वो सबको पहले ही साफ कर दें, समर
0: वगैरह जो भी है सब हटा दें,
1: पुराने जो फसल है उनके जो बीज वगैरह या उनके जो स्टबल्स हैं उसको हटा दें। उसके बाद प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, जैसा मैंने कहा ब्यूटाक्लोर 2.5 लीटर पर हेक्टेयर की दर से ट्रांसप्लांटिंग के 5 से 7 दिन के अंदर यूज़ करें। साथ में लास्ट में और एक हैंड वीडिंग, जब ट्रांसप्लांटिंग के 30 से 40 दिन के अंदर एक हैंड वीडिंग भी करें तो आपका वीड प्रॉब्लम मेरे ख्याल से
0: सॉल्व हो सकता है।
1: और किसान उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा फसल उनको मिलेगा।
0: बिल्कुल, तो पहले तो समर प्लविंग या गर्मी की जुताई या खेत को पूरी तरह से साफ करें, अच्छी तरह से जुताई करें, और रोपाई के बाद 5 से 7 दिन के अंदर आपने जैसा कहा कि ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल 2.5 लीटर एक हेक्टेयर के हिसाब से कर दें, और उसके बाद एक बार हाथ से निकाल दें अगर कुछ खरपतवार आता है तो। इस तरह से करने से किसानों को ज़्यादा मतलब खरपतवारों से नुकसान नहीं होगा। चलिए, तो मैडम आप कार्यक्रम में आए और आपने धान के कौन कौन से प्रमुख खरपतवार हैं और इनका नियंत्रण किसान भाई कैसे कर सकते हैं इस बारे में अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
2: धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन। साथियों, अभी आपने इस विषय में जसिंता बागी जी से की गई ये बातचीत सुनी और जाना कि धान की फसल में खरपतवार को किस तरह से प्रबंधित कर नियंत्रित किया जा सकता है।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहा है?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: और साथियों, अब हम कार्यक्रम के माहौल को कुछ गीत संगीत की ओर लिए चलते हैं और आपके साथ आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

0: साथियों, गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं इसे आपने जरूर पसंद किया होगा। और आप लीजिए ये जानकारी, जिसका विषय है केचुआ कंपोस्ट।
1: किसान भाइयों, केचुआ की खाद बनाने के लिए किसी अच्छे पेड़ की छाया में, जहां पर पानी निकास की सुविधा हो, ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए। केचुआ खाद आप दो तरह से बना सकते हैं, पहले ढेर बनाकर और दूसरा गड्ढे में। इसके लिए सबसे पहले आपको आधा किलोग्राम से एक किलोग्राम तक केचुआ खरीदकर किसी जगह में जहां पर धूप और बारिश से बचाया जा सके, टैंक बनाकर आधी सड़ी हुई गोबर की खाद और कुछ मिट्टी

डालकर केचुओं को टैंक में छोड़ देना चाहिए। गोबर की खाद डालने से पहले टैंक में यदि पुराना बोरा उपलब्ध हो तो नीचे बिछा दें, जिसके बाद गोबर की खाद डाल दें। ये हमेशा ध्यान रखें कि टैंक में 45-50% नमी बनी रहे। इस तरह बीच में तापक्रम भी नाप लेना चाहिए, जो कि 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा तापक्रम होने पर केचुए मरने लगते हैं। इस तरह 2-3 महीने के अंदर 2-3 किलोग्राम वजन तक का केचुआ आप तैयार कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं केचुआ खाद बनाने की विधि के बारे में। जिस फसल अवशेष से कूड़ा करकट या कचरे से केचुआ खाद तैयार करना हो, उसमें से सबसे पहले कांच, पत्थर, धातु के टुकड़े आदि को अलग कर लें। इसके बाद जिस कचरे से या फसल अवशेष से खाद बनानी हो, उसे पहले अलग टैंक या गड्ढे में 1:1 अनुपात में एक भाग फसल अवशेष और एक भाग गोबर ढेर बनाकर 30 से 45 दिन तक रख लें। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ताज़ा गोबर और फसल अवशेष को मिलने

0: पत्थर, धातु के टुकड़े आदि को अलग कर लें। इसके बाद जिस कचरे से या फसल अवशेष से खाद बनानी हो, उसे पहले अलग टैंक या गड्ढे में एक एक अनुपात में एक भाग फसल अवशेष और एक भाग गोबर ढेर बनाकर 30 से 45 दिन तक रख लें। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ताज़ा गोबर और फसल अवशेष को मिलने से ढेर का तापक्रम एकाएक बढ़ जाता है, जो कि करीब करीब 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ऐसी अवस्था में यदि हम ढेर में केचुआ मिला दें तो केचुओं के मरने का डर रहता है। जब तापक्रम धीरे धीरे गिरकर 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए तो गड्ढे में केचुआ 1.5 किलोग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से डालना चाहिए, या फिर इसके लिए भूमि के ऊपर नर्सरी बेड तैयार करके इस पर आसानी से सड़ने वाले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके 2 इंच मोटी सतह बना देनी चाहिए। इसके ऊपर 2 से 3 इंच सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर 1.5 किलोग्राम केचुआ प्रति क्विंटल गोबर और फसल अवशेष के मात्रा के हिसाब से डालकर ढक देना चाहिए। 15 से 20 दिन के अंतराल पर नमी को परख लेना चाहिए। नमी कम होने पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद मोटी टाट की पट्टी से इस ढेर को ढक दें। झाड़ी से टाट पट्टी पर आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन पानी छिड़कते रहें ताकि 45 से 50 प्रतिशत नमी बनी रहे। इसे अधिक नमी या गीलापन रहने से हवा अवरुद्ध हो सकती है, जिससे सूक्ष्म जीवाणु तथा केचुए ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे और केचुए मर भी सकते हैं। नर्सरी बेड का तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सप्ताह में एक बार नर्सरी बेड का कचरा ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। इस पद्धति से 90 से 100 दिन में अच्छी गुणवत्ता वाली केचुए की खाद तैयार हो जाती है। यह देखने में चाय के पाउडर जैसा दिखता है और इससे मिट्टी के समान सौंधी खुशबू आती है। खाद निकालने के 8 दिन पूर्व से सिंचाई बंद कर दें तथा खाद के छोटे छोटे ढेर बना लें, जिससे केचुए खाद की निचली सतह में चले जाएंगे और खाद को हम हाथ से अलग कर सकते हैं। नर्सरी को तेज धूप और बारिश से बचाने के लिए घास फूस का शेड बनाकर खाद बनाना अति उत्तम रहेगा।
1: केचुआ कंपोस्ट के संदर्भ में अभी आपने ये जानकारी हासिल की और इस जानकारी के बाद आनंद लीजिए एक और प्यारे से गीत का।
2: अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा।

साथियों, गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं इसे आपने ज़रूर पसंद किया होगा। और भाइयों, इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। तो हम आपको बता दें कि हमारा आज का प्रश्न था कि रजनीगंधा के फूलों का प्रवर्धन कैसे किया जाता है, बीजों से या फिर कंदों से। और साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि रजनीगंधा के फूलों का प्रवर्धन कंदों के द्वारा किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: और साथियों, इसी के साथ बातों और जानकारियों की कृषि जगत की इस संध्या को आज के लिए अब हम यहीं पर देते हैं विराम, क्योंकि समय हमें और अनुमति नहीं दे रहा। अब मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और फिलहाल के लिए शिवानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 में हैं। अब सुनिए कार्यक्रम दर्द भरे नगमे। जिसे अपना समझा वही बेवफा निकला, मुस्कुराहट के पीछे दर्द छिपा निकला। अब किसी से उम्मीद नहीं रखते, हर अपना वक्त के साथ पराया निकला।

प्यासे नैन तेरी राह निहारते रहे, हर आहट पर तेरा नाम पुकारते रहे। तू आया नहीं मगर तेरी यादों के सहारे, हम उम्र भर मुस्कुराते और बिखरते रहे।

आज ठुकरा रहे हो मेरी चाहत को, कल मेरी यादों में रातें गुजारोगे। जब कोई अपना साथ छोड़ देगा, तब तुम मेरी वफाओं को याद करोगे।

कोई जाने या ना जाने दिल की बात छुपी रहती है, होठ मुस्कुरा भी दे तो क्या, आँखों में तन्हाई बसी रहती है।

काश कोई होता जो मेरा भी कहलाता, मेरे खामोश दर्द को बिना कहे ही समझ जाता, इस भीड़ भरी दुनिया में अपना होता तो शायद ये दिल इतना तन्हा न होता।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, हम आपको पुनः अवगत करवा दें कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों से।

प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण कार्यक्रम में आप सुनेंगे रिटायर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर श्री भानु प्रताप यादव के साथ ली गई भेंट वार्ता। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकारा होंगी मीनू पुरुषोत्तम और ताहिरा सईद। तराने सुहाने कार्यक्रम का आनंद लीजिए सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप MS शीला का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। SMS माई चॉइस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:00। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12:00 आप कुछ सुप्रसिद्ध गीत सुन पाएंगे। दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में एक ही फिल्म के गीत सुनवाए जाएंगे।

आपके नाम फिल्मी पैगाम, फरमाइशें फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। निकोबारी कार्यक्रम के साथ हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे, जिसमें तमालू विलेज के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत सुनवाए जाएंगे। शाम 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। शाम 4:45 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे कृषि पर आधारित कार्यक्रम होगा। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा चिरंतनी। किसानवाणी कार्यक्रम में संध्या 6 बजे आप सुनेंगे श्री पी के बाला के साथ की गई बातचीत, विषय होगा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में चारा प्रबंधन। शाम 6:30 पर सुनिए श्री राधा कृष्ण प्रसाद का लिखा नाटक अंतिम पड़ाव।

युववाणी कार्यक्रम के तहत संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे अरुणा आसिफ अली की जन्मतिथि पर चर्चा, तत्पश्चात पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार। रात 8 बजे सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात 8:15 पर

0: भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा की रेडियो रिपोर्ट, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब सुनिए प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक आधार पर सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी एलिवेटेड परियोजना को बनाने की मंजूरी दी। 14,400 करोड़ रुपए से 6 लेन ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने तथा महाकवि कालिदास जयंती के उपलक्ष्य में महाकवि कालिदास राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है और स्टॉप डायरिया अभियान के अंतर्गत बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए वृक्षाबाद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में सौश्रोत्तम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है।
1: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत मंजूरी दी गई है। इससे शहरी आवाजाही बेहतर होगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच बिना रुकावट कनेक्टिविटी देगा, जिससे शहर के रोड नेटवर्क पर भीड़

कम होगी और शहरी आवाजाही बेहतर होगी। उम्मीद है कि इससे प्रोजेक्ट के असर वाले इलाके में यात्रा का औसत समय लगभग 60 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थलों तक संपर्क को काफी बेहतर बनाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, महाकवि कालिदास राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव और स्टॉप डायरिया अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने तथा महाकवि कालिदास जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा महाकवि कालिदास राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। भारत स्पीक्स थ्रू थिएटर युवा रंगमंच से राष्ट्र जागरण विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। महोत्सव के अंतर्गत आज शाम से राजधानी श्री विजयपुरम में दो अलग अलग सभागारों में विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से संबंधित 20 मिनट की नाट्य प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। सरकारी बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं कालापानी सेलुलर जेल की पुकार नाटक का मंचन करेंगी। वहीं सरकारी माध्यमिक विद्यालय जंगलीघाट के विद्यार्थी नेताजी आजादी का ज्वालामुखी नाटक का मंचन करेंगे। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक चेतना और रंगमंच के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण की भावना को सुदृढ़ करना है। केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में आज वृक्षाबाद के सामुदायिक भवन में स्टॉप डायरिया अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया से होने वाली मृत्यु को शून्य करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ एचएम सिद्धाराजू ने डायरिया की रोकथाम के लिए सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तथा हाथ धोने की आदत अपनाने पर बल दिया। इस अवसर पर वार्ड संख्या 21 के पार्षद अरुबादी ने केंद्र शासित प्रदेश में डायरिया के मामलों के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में गारचरामा जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ पी के पालित और परिवार कल्याण उपनिदेशक डॉ शाइनी वर्गीज भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आशा कार्यकर्ताओं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों तथा स्कूली विद्यार्थियों ने हाथ धोने की सही विधि, ORS घोल तैयार करने और जिंक के महत्व पर प्रदर्शन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर ORS के पैकेट और जिंक की गोलियों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। खेल एवं युवा कार्य निदेशालय, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा पर्यटन विभाग के सहयोग से आइलैंड मॉनसून साइकिलिंग टूर 2026 का आयोजन 19 जुलाई को ओपन पुरुष एवं महिला वर्ग में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे नेताजी स्टेडियम से शुरू होगा। साइकिलिंग टूर नेताजी स्टेडियम मुख्य द्वार से शुरू होकर बीएड गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, JNRM कॉलेज, गवर्नमेंट प्रेस, सिंक्लेयर्स होटल, मजार पहाड़ चौक, विज्ञान केंद्र, हॉर्नबिल नेस्ट, कार्बाइनस्कोप तट पर पहुंचकर संपन्न होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे समय से पूर्व नेताजी स्टेडियम के मुख्य द्वार पर उपस्थित होकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। अधिक जानकारी के लिए फोन संख्या 9476081707 पर संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक आधार पर सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी एलिवेटेड परियोजना को बनाने की मंजूरी दी। 14,400 करोड़ रुपये से

सिक्स लेन ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने तथा महाकवि कालिदास जयंती के उपलक्ष्य में महाकवि कालिदास राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है और स्टॉप डायरिया अभियान के अंतर्गत बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए वृक्षाबाद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। जनसेवाओं को चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। जबकि मछुआरों को विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समुद्री क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को कल तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। आइए अब सुनते हैं जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहांसरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी बम्बुका लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल 16 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर एमवी रानीचंगा परसों यानी शुक्रवार 17 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान शनिवार 18 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर शुक्रवार 17 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान शनिवार 18 तारीख को सुबह 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार जाने के लिए एमवी कालीघाट शनिवार 18 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान रविवार 19 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए कल 16 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटान कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। इस जलयान की अगली यात्रा स्वराज द्वीप के लिए कल ही शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से होगी और ये जलयान परसों यानी 17 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप जाने के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और इस जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी हटबे

कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा ये जलयान। कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। एमवी स्टेटालैन स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित

एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशासन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

ने। अब सुनिए अलका याग्निक का गाया धरती पुत्र फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे शब्दों को संगीत में ढाला है नदीम श्रवण ने।

अभी आप असली नकली फिल्म का गीत सुन रहे थे। आवाज़ें थीं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन।

अलका याग्निक के गाए धरती पुत्रक फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। अब युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 15 जुलाई है और प्रत्येक वर्ष आज के दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर जीवन के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के महत्व के प्रति जागरूक करना है। आज के समय में केवल शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यावहारिक कौशल भी उतनी ही आवश्यक है। कंप्यूटर, संचार, डिजिटल तकनीक, उद्यमिता, नेतृत्व, समस्या समाधान तथा तकनीकी प्रशिक्षण जैसे कौशल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं। कौशल विकास से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। भारत जैसे युवा देश में कौशल विकास का विशेष महत्व है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जा रहा है। इससे बेरोजगारी कम करने, आर्थिक विकास को गति देने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलती है। साथ ही उद्योगों को भी प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल उपलब्ध होता है। दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस हमें यह संदेश देता है कि कौशल ही सफलता की कुंजी है। यदि युवा अपने ज्ञान के साथ साथ नए कौशल भी सीखे तो वे न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि देश की प्रगति और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए प्रत्येक युवा को निरंतर सीखने और अपने कौशल का विकास करने का प्रयास करना चाहिए और यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, इस चर्चा के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज बुधवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है हुनर की असली पहचान। एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे, आरव और विवान। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। आरव का मानना था कि केवल अच्छी पढ़ाई ही सफलता दिला सकती है, जबकि विवान का विश्वास था कि पढ़ाई के साथ कोई व्यवहारिक कौशल सीखना भी उतना ही जरूरी है। स्कूल में विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जब विशेषज्ञों ने डिजिटल स्किल, संचार कौशल और स्वरोजगार के महत्व के बारे में बताया, तब आरव भी सोच में पड़ गया कि बदलती दुनिया में केवल डिग्री नहीं, बल्कि हुनर भी सफलता की कुंजी है।

दोस्तों, कुछ दिन बाद विवान ने ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन का कोर्स शुरू किया और रोज अभ्यास करने लगा। दूसरी ओर आरव ने भी कंप्यूटर और सार्वजनिक भाषण पब्लिक स्पीकिंग का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। शुरुआत में दोनों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगी। उन्हें समझ में आया कि कोई भी कौशल लगातार अभ्यास और धैर्य से ही विकसित होता है।

दोस्तों, कुछ महीनों के बाद स्कूल में एक नवाचार प्रतियोगिता आयोजित हुई। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा डिजिटल पोस्टर और प्रस्तुति तैयार की जिसमें युवाओं को नए कौशल सीखने के लिए प्रेरित किया गया। उनकी मेहनत रंग लाई और वे प्रतियोगिता के विजेता बने। पुरस्कार के साथ उन्हें स्थानीय उद्योग विशेषज्ञों से मिलने का भी अवसर मिला। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि टीम वर्क, रचनात्मक सोच और तकनीकी कौशल मिलकर बड़े अवसरों का निर्माण करते हैं।

दोस्तों, प्रतियोगिता के बाद आरव और विवान ने अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण शिविर शुरू किया। वे बच्चों को कंप्यूटर की मूल बातें, संचार कौशल और रचनात्मक गतिविधियां सिखाने लगे। धीरे धीरे कई युवा उनसे जुड़ गए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए नए कौशल सीखने लगे। आरव और विवान को महसूस हुआ कि सच्ची सफलता केवल स्वयं आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाने में है।

दोस्तों, एक वर्ष बीत गया और दोनों ने ऑनलाइन के जरिए अच्छी खासी कमाई कर ली। अगले वर्ष जब 15 जुलाई आया तो दोनों दोस्तों को विश्व युवा कौशल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज के समय में हर युवा को पढ़ाई के साथ साथ कोई न कोई उपयोगी कौशल अवश्य सीखना चाहिए। उनकी प्रेरक कहानी सुनकर अनेक छात्रों ने नए कौशल सीखने का संकल्प लिया। उस दिन आरव और विवान को यह एहसास हुआ कि हुनर केवल रोजगार का माध्यम नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और समाज की प्रगति का आधार भी है। दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस हमें यह संदेश देता है कि शिक्षा के साथ कौशल विकास भी जीवन में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। आरव और विवान की कहानी हमें बताती है कि सीखने की इच्छा, निरंतर अभ्यास और सहयोग की भावना किसी भी युवा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। यदि हर युवा अपने ज्ञान के साथ कोई उपयोगी कौशल भी विकसित करें तो वह न केवल अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में आप हार न मानें, हर परिस्थिति का डटकर सामना करें क्योंकि परेशानियां हर किसी के जीवन में आती रहती हैं, पर जो इन परेशानियों से आगे बढ़ जाता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आपके मनोरंजन के लिए आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनोखी पहचान फिल्म के इस गीत से। आवाज़ है आशा भोसले की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है

अभी आप लता मंगेशकर का गाया अपना बना लो फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी तथा संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए अपना खून फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन।
1: करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का जीवंत स्वरूप एक अनुपम महापर्व है पूरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है जिसकी भव्यता शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आने के लिए आतुर होते हैं। यही है भगवान और भक्त के मिलन का उत्सव।

0: सनातन संस्कृति का गौरव और मानवता के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेम का अद्भुत प्रतीक रथ यात्रा। 12वीं शताब्दी में निर्मित श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से तीनों रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही विधियों के अनुसार परंपरागत शिल्प कला में निपुण सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम करते हैं और आधुनिक मशीनों के युग में भी इन विशाल रथों का निर्माण परंपरागत तकनीकों से ही किया जाता है। तीनों में सबसे बड़े भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। ये रथ 16 विशाल पहियों वाला है। पीले और लाल रंग के रेशमी कपड़े जरी आदि से सुंदर रूप से सजे इस रथ को गरुड़ध्वज तथा कपिध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलभद्र का रथ है तालध्वज, जो 14 पहियों का है और हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है, जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, जो 12 पहियों वाला सौम्य और आकर्षक रथ है। काले एवं लाल रंग के कपड़े इस रथ पर शोभायमान होते हैं। ये तीनों रथ केवल लकड़ी के बने ढांचे नहीं बल्कि चलते फिरते देवालय हैं। तीनों ठाकुरों को रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ कराने से पहले श्री मंदिर के पुरोहित तीनों रथों की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। श्री बलभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष प्रक्रिया से श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, जिसे पोहंडी विजय कहा जाता है। और जब शंखनाद, घंट ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं के कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ की गूंज उठती है तो पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच उतर आने को आतुर हो। रथ यात्रा के विषय में मूल तथ्य की जानकारी लेते हैं जगन्नाथ संस्कृति के जानकार डॉक्टर शांतनु कुमार रथ से।
1: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व में अनन्य है। ये इसीलिए अनन्य है कि यहाँ भक्त भगवान को नहीं स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पतित पावन यात्रा। इसका मतलब ये है कि संसार में आकर माया और संस्कार बस मनुष्य जो पतित हो जाता है, इन पतितों मनुष्यों को पावन करने के लिए महाप्रभु स्वयं ये यात्रा रचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ

रथ पर आरूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने से मनुष्य को अपने अंदर विराजमान आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। रथ यात्रा के सारे क्षण ऐसा हो जाता है कि यह भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये ऐसे एक बिंदु है जहाँ दोनों समाहित हो जाते हैं। धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय, विचार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को प्रेम करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ।

0: कार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को प्रेम करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, तुम भी करो। महाप्रभु का यह संदेश शत्रु भाव से सड़ता हुआ सारे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी है।
1: अपने अपने रथों पर जब तीनों ठाकुर विराजमान हो जाते हैं, तब होता है रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुष्ठान, जिसे छेरा पहरा कहते हैं। छेरा पहरा विधि के पीछे के संदेश के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं रथ यात्रा के भाष्यकार श्री मोहन मजीठिया से।
2: दो शब्दों को मिलाकर छेरा पहरा नामकरण हुआ है। छेरा का अर्थ है चंदन का गाढ़ा घोल और पहरा का अर्थ है झाड़ू से साफ करना। ये एक विशेष नीति है जिसके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आद्य सेवक माने जाने वाले पुरी के गजपति महाराजा को सौभाग्य प्राप्त है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता जब रथों पर विराजमान हो जाते हैं, तब गजपति महाराजा के पास संदेशा भेजा जाता है। महाराजा राजकीय वेशभूषा में एक स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में बैठकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। रथारूढ़ ठाकुरों के दर्शन, पूजा, आरती के साथ साथ सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का सिंचन कर महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति संपन्न करते हैं। राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, विनम्रता का, समानता का। जहाँ राजा अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं, जो जगत के सम्राट हैं, उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर हैं, सभी उन्हीं के सेवक हैं।
3: हरि ओम तत्सत् श्री श्री जगन्नाथ।
4: हरि ओम तत्सत् श्री श्री जगन्नाथ।
1: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्धन मठ की विशेष भूमिका के बारे में बता रहे हैं गोवर्धन पीठ की आदित्य वाहिनी के प्रमुख श्री मातृ प्रसाद मिश्र।
5: आदि शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मोद्धारक माना जाता है, क्योंकि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह 164 साल भूमिगत थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर दिग्विजय यात्रा में बृहद भारत को परिभ्राजक रूप में परिक्रमा करते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनको तपा बल के मालूम हुआ कि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उस समय आदि शंकराचार्य जी भगवान ने तत्कालिक राजा को आदेश देकर वनजाग पद्धति ने ब्रह्म को उद्धार किया। केवल ब्रह्म ही था, क्योंकि दारू विग्रह भूमिगत होते हुए क्षय हो गए थे। उसी वजह से आदि शंकराचार्य भगवान पुनः जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह को रूप प्रदान किया। वही जगत गुरु जी जो मंदिर के सारी रीति नीति परंपरा पूजा व्यवस्थावली सब कुछ तय किए, भारत से कोने कोने से ब्राह्मणों को बुला के 16 शासन प्रतिष्ठा किए, मुक्ति मंडप प्रतिष्ठा किए। पहले महाप्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल सेवायत वर्गों के लिए उपलब्ध था। सारी आने वाले भक्तों के लिए भी इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए प्रसाद बढ़ाया, भोग मंडप प्रतिष्ठा किया। इतने कृत्या आप देख रहे श्री जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था में सारी कृतियों का नियामक आदि शंकराचार्य भगवान है। उस समय से 2005 साल से वही स्वर्णिम इतिहास आज भी श्री मंदिर व्यवस्था में प्रचलित है। वर्तमान में वही गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो आचार्य पद में वर्ण होते हैं, वही श्री मंदिर का सारी रीति नीति परंपरा धार्मिक कृतियों का नेतृत्व लेते हैं।
1: पूरी की रथ यात्रा प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को देश विदेश से अपनी ओर आकर्षित करती है। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वापस घर लौटने की यात्रा, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के मार्ग में भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे रुकते हैं, जहाँ उन्हें भोग के रूप में उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन पोड़ो पिठा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच पारिवारिक स्नेह का सुंदर उदाहरण है। फिर श्री मंदिर के बाहर रथों पर ही पारंपरिक रूप से ठाकुरों को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। सोना वेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भी देर रात तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। श्री मंदिर में माता लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब वापस आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने को होते हैं, तब देवी लक्ष्मी क्रोध और अभिमान के कारण मंदिर

0: ये द्वार बंद कर देती हैं। इस अनोखी परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रथयात्रा भाष्यकार श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
1: जिस लीला में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मां के पास भेंट करने के लिए 9 दिन की यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत श्री मंदिर को पुनः लौटने वाली लीला की अंतिम लीला लीलाद्री विजय लीला रूप में जाना जाता है। इस लीला में सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, दाऊ बलदेव जी, बहन सुभद्रा माता जी एक एक होकर रथ से उतर कर सिंहासन की ओर यात्रा करते हैं, उसको गुटी पहंडी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी जब जब मंदिर की सिंहासन से बाहर आते हैं, तब भक्तों के साथ भेंट होने के लिए मन में उत्सुकता की भाव रहता है, जिस कारण प्रभु जी धाड़ी पहनने में आते हैं। अर्थात भाव यह है कि भक्तों को छोड़कर उनसे दूर हटने के लिए प्रभु जी मन नहीं करते हैं, इसलिए धीरे धीरे एक बाद एक अंदर जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नीलाद्री विजय की यात्रा में बलदाऊ और सुभद्रा जी अंदर जाने उपरांत जब जगन्नाथ जी सिंहासन की ओर यात्रा शुरू करते हैं, तो माँ महालक्ष्मी क्रोध अभिमान आदि भाव से मंदिर के द्वार को बंद कर देते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को अपनी रथ यात्रा में साथ न लेने के कारण क्रोध में आकर ऐसी मनुष्यचित लीला करते हैं। दूसरी भगवान जगन्नाथ जी भी माँ महालक्ष्मी जी की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने साथ वस्त्र अलंकार तथा रसगुल्ला भी लेकर जाते हैं और महालक्ष्मी जी को मनाते हैं और सिंहासन की ओर जाते हैं। परम ब्रह्म को यह मनुष्य लीला वास्तव में बड़ी अनोखी है, आनंदमय शास्त्रीय होने साथ साथ संसार कल्याण का कारण भी है।
0: रथयात्रा में श्रद्धालुओं की निरापत्ता एवं श्रृंखलित रथयात्रा के लिए की गई विधि व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पुरी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक सिंह।
2: सारे डिपार्टमेंट सबकी तरफ से मिलके एक मिलित प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़ किया है, पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाया गया है, इन्फॉर्मेशन चैनल्स बढ़ाए हैं, पब्लिक के साथ हम जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टाइमली शेयर करना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस मूवमेंट, फर्स्ट एड सेंटर्स का इफेक्टिवनेस, इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारी एजेंसी सारे डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं रेगुलरली, सब लोग मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं।
0: श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी रथ यात्रा के सुचारू संचालन के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं।
3: This is being laid on ensuring the smooth conduct of rituals, the nitis as we call, efficient crowd management, cleanliness and sanitation, drinking water, healthcare services, disaster preparedness and effective dissemination of public information. And all the concerned departments of the state government and also many of the government of India, they are working in close coordination to facilitate a very safe, orderly and spiritually fulfilling Rath Yatra for the devotees coming from far across the world. The Sri Jagannath Temple Administration expresses its gratitude to all the sabbats of the Sri Mandira, the officials, the volunteers and all the stakeholders for their wholehearted cooperation and dedication. With the divine blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, every effort is being made to ensure the successful and peaceful conduct of this year's chariot festival. We request all the devotees coming for this grand spectacle to kindly follow the instructions and the procedures laid out for them. There would be few traffic restrictions in the city and also there would be few specific guidelines relating to the movement of devotees in the Badadanda and the adjoining areas. So we request everyone to kindly follow the SOP issued by the administration.
0: पूरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वे किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है। इसी शाश्वत संदेश के साथ हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।

0: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर निशांत मजीठिया, प्रस्तुति सहयोग दिलीप कुमार नायक और राजीव कुमार महुंता, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। पहले सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यालय कार्यपालक अभियंता सिविल के साथ पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल 11 ग्रुप ए राजपत्रित गैर मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में समान पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक्स लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक्स लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की पार्ट ए पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा 2 प्रतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट पिछले 5 वर्षों की APAR और ACR प्रतियां भी लगानी होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत APCCF नोडल अधिकारी FCA एवं MS अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संविदा आधार पर कंसल्टेंट के 2 पदों पर योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों पर नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 40,000 का सामयिकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति का स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होगा। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉरेस्ट्री पर्यावरण विज्ञान मैरिन बायोलॉजी ओशन स्टडी अथवा समकक्ष विषय पर स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही पर्यावरण अध्ययन इम्पैक्ट असेसमेंट इकोलॉजी मैरिन बायोलॉजी रिस्क एनालिसिस अथवा पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित कार्य अनुभव तथा MS ऑफिस का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन 100 अंकों की वेटेज आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र अंडमान एवं निकोबार वन विभाग तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की वेबसाइट https://

0: forest.andaman.nic.in एवं https://andaman.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित कार्यालय APCCF वन सदन हेडो श्री विजयपुरम में केवल ऑफलाइन जमा कराना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 29 जुलाई 2026 को सायं 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए वन विभाग से संपर्क किया जा सकता है। और इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
2: Nexa.
3: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गौरव गान।

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एनुइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है

0: उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं, जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है, जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास

0: गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं बल्कि समझौतों से लिखा जाता है। ऐसे समझौते जो सीमाओं को नहीं संभावनाओं को जोड़ते हैं, ऐसे समझौते जिनकी गूंज केवल बंदरगाहों और बाजारों तक नहीं बल्कि उद्योगों, खेतों, कारखानों, स्टार्टअप्स और करोड़ों युवाओं के भविष्य तक सुनाई देती है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा भी कुछ ऐसा ही कदम है। ये सिर्फ आयात निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है। लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएगा? क्या ये लिविंग ब्रिज को आर्थिक महासेतु में बदल पाएगा? क्या इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समझौता केवल व्यापार बढ़ाएगा या भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस विशेष चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, डॉक्टर ए के भट्टाचार्य और डॉक्टर एस पी शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया।
3: नमस्कार।
1: डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, ऐसे में ये जो भारत के साथ समझौता हुआ है, इसे आप कैसे दूसरे समझौतों से अलग देखते हैं? और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में इसके प्रमुख पहलुओं पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।
2: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ब्रेग्जिट के बाद यूके ने काफी देशों से समझौते किए हैं। यूके एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है और वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और यूके का जो आगे का चलन है, जो यूके का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और जो यूके की एक रेजिलियंस है, वो सभी को मालूम है। सभी देशों में यूके अपनी रेजिलियंस के दौर पे माना जाता है। तो यूके ने अपना जो ट्रेड ट्रैजेक्टरी को और जो अपना इकोनॉमिक होराइजन्स है उनको इंक्रीज करने के लिए जो व्यापार समझौते किए, पहले किए और जो भी इंडिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें खास बात यह है कि एक तो दोनों ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। एक तो इस तरीके से दोनों में जो एक आदान प्रदान है, दोनों में जो एक संभावना है, वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरा, जो एक हम कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करते हैं कि कई बार दोनों ही इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव होती हैं तो उनमें खास जो इकोनॉमिक और ट्रेड डील्स नहीं हो पाती हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दोनों ही कंपटीशन में हैं। लेकिन हमारा यूके के साथ ऐसा नहीं है, हम एक कॉम्प्लीमेंटरी इकोनॉमी है। जैसे हम ज्यादातर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूके हमें जो हाई एंड कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में है, ज्यादातर जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं वो यूके से लेते हैं और आगे और ज्यादा लेंगे। और दूसरा, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे जो लेदर है, हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, हमारा जो स्टील है और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो ज्यादातर हम यूके को और तगाद में आगे दे पाएंगे, जो कि हमें 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्केट एक्सेस दिया गया है। जैसे ये तो एक बात होगी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में गिव एंड टेक है, बहुत ही एफिशिएंट है। हम जो प्रोडक्ट्स उनको देंगे वो उनमें हम कंपटीशन में नहीं है, उनको भी जरूरत है और हमें भी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है। एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंटरिटी है जो हमारा लक्ष्य है एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से। कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलके आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा, तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है। इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है। तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं।
1: जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आय

0: शुल्क का लाभ मिलेगा जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा। यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवाजाही आसान होगी। डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है?
1: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो सेटा जो की जो टर्म्स जो हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो हैं भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है। उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या तलहन ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, वो सारे क्षेत्र में ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं, उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो आंकड़े हैं वो जरा समझनी चाहिए। यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, पर उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इंपोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%। अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है, टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ है प्रोसेस फूड्स के ऊपर, वो घट के जीरो हो रही है। मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है, उसमें जीरो हो रही है। इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है, उसमें 18% था, उसमें जीरो हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स, वो बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें 18% है, जीरो हो जाएगा। लेदर एंड फुटवेयर में 16% था, उसमें जीरो हो जाएगा। और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था, उसमें भी जीरो हो जाएगा। और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8% था, उसमें भी जीरो हो जाएगा। ये सारे सेक्टर में, जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा तो हमारा शेयर सिर्फ 6% है, वो मैं समझता हूँ बढ़ जाएगा काफी। उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इंपोर्ट में 1% है, वो भी बढ़ जा सकता है। ऑटोमोटिव में देखेंगे तो उसमें भी 1% से कम है। केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है। इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है। ऐसे सारे चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोसेस फूड और गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, इन सारे क्षेत्रों में जो काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जॉब इंटेंसिव है, इनका जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो यूको है, और यूको जैसे मैंने कहा ये सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा आयात करता है पर हमारा शेयर बहुत कम है इस वक्त, तो सेटा के बाद जब 0% ड्यूटी में आ जाएंगी ये सारी वस्तुएं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, हमारी डोमेस्टिक एमएसएमई सेक्टर है, जॉब क्रिएशन की जो क्षमता जो है अर्थनीति की, उसमें काफी एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उसके साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं, क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं, उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है। उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं, उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट से ना कि भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने की डर है, उसके साथ साथ जो हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है ये सारे सेक्टर्स में, और जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो यूके की जो

0: मार्केट में जा सकते हैं। इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहाँ पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं, उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है। उनमें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह दोनों जगह टैक्स कटते हैं। एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं। इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है, बिजनेस की जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें काफी इजाफा होगा।
1: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात एफटीए के करते हैं तो कई सारे मादक पदार्थ हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स पर भारत के उच्च आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचाएं और दोनों देश इससे लाभ भी उठाएं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है, क्योंकि यूके का मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है और उनके जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स की बात की है, तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन वो क्रिएट करेंगे। तो उसके दो मायने हैं। एक तो पहला कि हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जो ऑलरेडी बहुत कंपेटिटिव है तो और ज्यादा कंपेटिटिव बनेगी, हम भी एक कंपटीशन फेस करेंगे और बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा, जिसको हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है। एक कोटा के थ्रू जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में बढ़ेगा। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारी इनोवेशन के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, खास करके जो पीएलआई है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे एफटीए करने के काबिल बने हैं। आप देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई एफटीए साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने एफटीए शुरू किए, मॉरिशियस से शुरू होकर अभी हम आज यूके इंप्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट को फ्लड कर दें और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेसेस हैं जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस देगा।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
0: देखिए, जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा, जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो जो प्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, तो पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो बात की
1: जी,
0: उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सेटा का एक प्रोविजन है, उसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट देने का और उसको मान्यकरण करने का जो प्रोसेस जो है, जो प्रणाली जो है, वो बहुत ही सरल की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जुलाई से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ओरिजिन 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे। अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो एफटीएस जो है और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो को जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूँ ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इम्पोर्टर को भी। समय आने पर हमारी भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
1: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत आईटी और

0: प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
1: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की कि बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी, दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं। 70% यूके है और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारी आईटी सर्विसेज हैं या फिर हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं या फिर हमारी एजुकेशन सर्विसेज हैं या फिर हमारे जो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उनके लिए एक प्रोविजन में उनको आगे मार्केट एक्सेस दी जाएगी। उनको कोई ऐसी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग, और वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वहीं पे एजुकेशन करके वहीं पे ही सेटल होने का और वहीं पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक माध्यम भी बनेगा, जो कि एफटीए आगे दर्शाता है कि उनको आगे मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो आगे वहां पे ही अपना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर, तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर एफटीए की बात है। आप देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड, दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द एफटीए। अभी एफटीए के बाद आगे का क्या रहेगा, मैं समझता हूं कि दोनों, खैर ज्यादातर हमें जो एक्सेस है जिसके लिए हमने एफटीए को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी जिसके लिए हमारा ये एफटीए भी हुआ, तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कम्पीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं। जो भी ये अनुपात है 23-24 और 33-34 का, मैं ये समझता हूं कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
0: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
2: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था, उसके बाद ये सारे जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हैं ऑलरेडी, यूके उसी में से एक है। इसका कारण है कि वो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है वहाँ पे जो फ्री ट्रेड की जो एक वातावरण था, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था उसमें काफ़ी एक धक्का पहुँचा था। तो मेरा मानना ये है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है उसमें एक काफ़ी एक धक्का मिला है उसको, और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज़्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, ईयू को मिला के मैं कह रहा हूँ, एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ हम लिंक्ड होने का एक एडिशनल एडवांटेज मिले। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक हमने इस सेटा में एक हमारी उपलब्धि ये रही है कि जो सीबैम का जो एक डर था, उस डर में हमारी जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसमें काफी हानि पहुंचने की एक डर था यूके के साथ, पर हमने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ब्रिटेन के साथ किया है उसके अंडर हम करीबन 85% जो हमारी स्टील एक्सपोर्ट्स है वो यूके सरकार की जो नई सीबीएम की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो क्लाइमेट एडजस्टेड जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो है, सो इसका मतलब 85% हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स है में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, सिर्फ 15% एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत रोकथाम लगेगी सर्टिफिकेट।

0: एडेप्टेशन की जरूरत होगी और वो क्लाइमेट एडेप्टेशन की जो कॉस्ट होती है जो 15-20% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा, पर मैं समझता हूं कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% है और सर्विसेज जो अनदर 50% है, दोनों की प्रोविजंस की गई हैं। जो चीज इसमें शायद आनी चाहिए थी और भी वो इन्वेस्टमेंट की थी कि इन्वेस्टमेंट को भी हम कैसे इसको ला सकें, पर हम यही आशा कर सकते हैं जब ट्रेड बढ़ेगा सर्विसेज ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे तब हमारी यूके और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है रफ्तार जो है वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
2: देखिए, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही हैं और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज़्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही हैं और खास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है और ऑटो कंपोनेंट्स, टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही हैं। तो अब ज़्यादातर जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज़्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे उनका और ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा। और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी ये सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के, तो इनको और ज़्यादा आगे ब्रेक थ्रू मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमई के हित हैं उस मद्देनजर उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज्यादा इंक्रीज हो और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज्यादा, उनको जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खास करके ये जो अभी हमारा इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उनके जब प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है और उनको और ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की और उनके और ज़्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नजरिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
0: देखिए, अगर आप रोजगार की बात देखें तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो लो लेवल जॉब्स में जो जरूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारे चीज़ों में, सब चीज़ों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में वो अब जीरो में आ चुकी है। नाउ जीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियाँ जो हैं उसमें ज़्यादातर एमएसएमई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं, हमारी युवा पीढ़ियों के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से वो एम्प्लॉय होती हैं, उनको नौकरी मिलती है, उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि एक जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलॉन्ग विद सीटा के साथ जो हुआ है, उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो नौकरी पेशाजीवी जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है। और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी एनेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से, आईआईएम से जो लड़के लड़कियां निकलती हैं, बाहर ग्रेजुएट करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये सर्ज हर जगह मैं समझता हूँ कि जो नौकरी की जो अवसर होती हैं वो उनकी वृद्धि जरूर होगी।
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5-10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्रैजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं और एक मोस्ट

0: फास्ट इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज. तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक. उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हर एक 5 से 7 वर्षों में आगे और डबल हो, और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनीफोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए. और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपना टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव चैप्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट. एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं. और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं, और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है इनको सपोर्ट करेगा. अब उसका एक ड्यूअल एडवांटेज है, एक तो एमएसएमई की सपोर्ट के साथ उनका जो ट्रैजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इंप्लीमेंट हो गया है यूके के साथ, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे. दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस. जब उनका इकोनॉमी जॉब स्केल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगी, और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे, और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे.
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में इस समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
2: ये समझौता जरूर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में. इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारे जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंक्लूसिव भी होनी चाहिए. और मैं समझता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफी इंक्लूसिव होगा. हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा.
1: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है. ये 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है, जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा. चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है. डॉक्टर शर्मा, आपका, डॉक्टर भट्टाचार्य चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार.
0: शुक्रिया. थैंक
3: यू. धन्यवाद. अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एसपी शर्मा. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
4: चर्चा का विषय है. ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है. श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम. कार्यक्रम का पहला गीत है खलनायक फिल्म से. आवाजें हैं अलका याग्निक और साथियों की. आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने.

अभी आप उदित नारायण और साथियों का गाया कोयला फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे इंदिवर तथा संगीतकार थे राजेश रोशन। सरगम कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार खुर्शीद हलोरी का लिखा परिंदा फिल्म का ये गीत, और इस गीत को स्वर दिया है आशा भोसले व सुरेश वाडकर ने।

अब पेश है इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म में रूप कुमार राठौर, जॉनी लीवर और अलका याग्निक का गाया ये गीत। बोल है देव कोहली के तथा धुन तैयार की है आदेश श्रीवास्तव ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म का ये गीत, और इस गीत को संगीत दिया है संजीव दर्शन ने।

आशा भोसले के गाए ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म के इस गीत के साथ ही सरगम कार्यक्रम समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। जनसेवाओं को चेतावनी में कहा जाता है कि द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। जबकि मछुआरों को विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:31 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: 4:59:14.
1: माइक टू 4:59:24.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 25वीं तिथि अर्थात 16 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।